अपनी हरता के परवार आप करे शक्ति फिर आप करे मार एक ना दिली जिंदगी एक प्रीत है बिस्यार आप करे करे आप हो गए सुकरी पुकार नान करना जिंदगी आ

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੇਗਾ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੇਗਾ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 103.6 ਮੇਗਾ ਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋਗੇ
1: ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुनोगे आराधना।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी। हुण सुनदे आं असीं भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

शाम 7:10 ते जन विश्वास का प्रोग्राम जिस विच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बारे गलबात की जाएगी। 8 बजे जिंदगी हसीना प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। इन्हों तो इलावा समाचार खबर ते न्यूज़ आपो अपने समय ते प्रसारित किए जाएंगे। ये अज के प्रोग्राम का वेरवा। कुछ ही पलों में तुसी सुनोगे संस्कृत विच समाचार।

0: स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितम् अस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्री गोयल तत्रत्य भैषजोद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतत्पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज, सनी दयानन्दः, तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दियां मुख खबरां।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तों उत्तराखंड दे 2 दिना दौरे ते होणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग दी मीटिंग विच विकसित भारत दृष्टिकोण लई केंद्र अते राज्यां दे समूहिक यतना ते जोर दिता है। भारत ने ओमान दे साहिल ते पलाऊ झंडे वाले टैंकर अमेटी स्टेबलो ते होए हमले की सख्त नखेपी की है। सरकार ने साइबर अपराधियों वालों सुरक्षा प्रणालियां अते वध रहे माली बुनियादी ढांचे खतरे बारे चेतावनी जारी की है। लिया पीढ़ियां दे निर्माण विच बेमिसाल योगदान है। हरियाणा सरकार ने सूबे भर के स्कूलों के 8वीं जमात के इतिहास के पाठ्यक्रम विच गुरुआ अते बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास शामिल किया है। पंजाब राज अनुसूचित जातियां कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने तरक्की मामलों विच हकदारा नूं लिया देन लई रोस्टर रजिस्टर चेकिंग कमेटियां की सिखलाई तुरंत यकीनी बनाने के निर्देश दिते। पंजाब दे खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग वल्लों बठिंडा विच 140 क्विंटल गैर कानूनी खाद जब्त। अफसरां नूं अचेतन चेकिंग तेजी लियाउण दे हुकम। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस वालों सरहद पारों नशीले पदार्थों की तस्करी करन वाले एक गिरोह का पर्दाफाश। 2 नाबालिका समेत 6 मुलजमान नूं 30 किलोग्राम तो वध हेरोइन समेत गिरफ्तार। मौसम विभाग वालों पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ विच अज लई गरज चमक दे नाल गड़ेमारी होने बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। औरतों की ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप का 10वां एडिशन अज तो शुरू होगा। भारतीय टीम एतवार नूं अपने टक्कर विरोधी पाकिस्तान विरुद्ध अपनी मुहिम की शुरुआत करेगी। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साड़ी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। साड़ी स्टूडियो की कड़ी मुताबिक इस वेले सवेर दे 7:03 हो रहे ने। प्रोग्राम सोनी सवेर नू थोड़ा जहा इंतजार होर।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, हसदा वसदा रहे तुहाडा परिवार। तो लो जी, नवी सवेर दे इस सोने वेले हुन वेला हो चुके है तुहाडी मन पसंदीदा प्रोग्राम सोनी सवेर दा। ते इस सोनी सफर च मैं तुहाडी दोस्त शुभिता रवांगी जी तुहाडे नाल। दोस्तों, अज जिहड़ी सवेर है ना, अज दी सवेर दा जिहड़ा मौसम है वह कुछ वखरा है। अहसास जिहड़ा ना वखरा जिहा अहसास करवा रहा है। कुछ दिनों तो पैरे जिहड़ी तिखी ते काफ़ी ज़्यादा गर्मी तो बाद जिहड़ी बारिश हुई है उन्हें मन नूं थोड़ा जिहा सुकून दे दिता है। तो शायद दोस्तों जिंदगी भी सानू यही सिखाती है कि हर मौसम इक्को जिहा नहीं रहिंदा। जिवें गर्मी तो बाद ठंडक दा एहसास हुंदा है, उवें ही औखे वेलियां तो बाद जिहड़ा ना दोस्तों वह चंगे दिन भी जरूर आते हैं। कुछ अजिहा ही सुनेहा जिहड़ा ना वह सानू मौसम ने दिता है कि जेकर रब इन्नी ज़्यादा तेज़ गर्मी तो बाद बारिश जो होंगी है उदे नाल सानू सुकून दवा सकता है, तो इवें ही जिहड़ियां बहुत सारिया जिंदगी च मुश्किल होंदिया ने जिन्हां तो असी अक्सर परेशान रहने हैं, रब जिहड़ा ना वह हर वेले साढ़े अंग संग है। तो असी कोशिश करनी है कि उसका एहसास करके हर समय नू उसकी रज़ा मान के अगे वधना है। इसलिए अज की जिहड़ी आपां शुरुआत है अपने दिन की सोहणे जिहे ख्यालां नाल करनी है, रब दे शुकराने नाल कि उसने जो भी दिता है, जो कुछ भी है साढ़े कोल वह बहुत कुछ है, उसकी रहमत है। तो विश्वास असी रखना है रब ते कि अगों भी साडे नाल चंगा ही होएगा, सानू बहुत कुछ देगा। तो बस इसी सकारात्मक सोच दे नाल असी एक घंटे तुहाडे लिए तुहाडा मनोरंजन भी करना है, सोहणे सोहणे गीत भी प्ले करने इस प्रोग्राम च। तो जो इंपोर्टेंस है अज के दिन की या फिर जो भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वह भी तुहाडे नाल असी शेयर करनी है, खास जानकारियां ते तुहानू सुनावांगे सोहणे सोहणे गीत। तो फिर तुसी बने रहना जी एक घंटा साडे नाल 8 बजे तक प्रोग्राम सोहणी सवेर च। तो आओ फिर करते हैं इस प्रोग्राम ते अज के दिन की शुरुआत इस पॉजिटिव जय गीत दे नाल। राहत फतेह अली खान की आवाज़ च तुसी भी इंजॉय करो ये गीत।

वाकई जी, इस तपती गर्मी तो बाद जेड़ा अज दा दिन है वो वखरा ही सुकून दे रहा है। ठीक उस तरह जिस तरह प्रोग्राम सोहनी सवेर च सोहनिया सोहनिया गल्लां जिहड़ियां ने वो असी तुहाडे नाल सांझियां करदे हाँ, ते वो गल्लां तुहानू भी शायद कितना ना कितना सुकून दिंदियां होणगियां। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों सोहनी सवेर, ते हुण वेला हो चुक्या इस प्रोग्राम च सोहणे जिहे पॉजिटिव थॉट दा। दोस्तों कहिंदे नहीं कि मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। हाँ, कई बारी उसका जिहड़ा नतीजा है, जिहड़े रिजल्ट्स ने, जिहड़ा फल है वो देर नाल जरूर मिलता है, पर मिलता जरूर है। जिवें सूरज हर रोज़ चढ़ता है पर रातों रात दोपहर नहीं हो जाती, उसे तरह कहिंदे नहीं कि कामयाबी भी एक दिन च नहीं मिलती, उस लई लगातार कोशिश करनी पैंदी है। इसलिए अज

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों सोनी सवेर ते जेकर हुण असीं इस मौसम दी गल करिए ते मौसम ने जिहड़ी बारिश हुई है उन्हें ठंड ते पा दित्ती है, पर आने वाले दिनों च मौसम किवें दा रहेगा उस बारे जानकारी देना भी तुहानू बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मौसम विभाग वालों यानी कि IMD वालों पंजाब, हरियाणा अते चंडीगढ़ विच अज लई गरज चमक दे नाल गड़ेमारी होण बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो दोस्तों ऑरेंज अलर्ट जिहड़ा जारी किया गया किते ना किते ऑलरेडी IMD वालों मौसम विभाग वालों ये जानकारी पहला दिती गई सी कि 11 जून तो मौसम जिहड़ा ना वह करवट लवेगा। तो जेकर असी बीते कल की गल करिए तो सवेरे जिथे मोहाली विच बारिश हुई उस तो बाद अमृतसर लुधियाना विखे जड़ा मौसम बदलिया एंड दैन जलंधर दी आपां गल करिए या होर जड़े एरियाज़ ने उत्थे जो बारिश पई कल शाम पहला तेज़ हवावां चलिया फिर बारिश पई उदे करके मौसम जड़ा वो बहुत सोहना हो गया ते नाल दे नाल टेंपरेचर जड़ा तापमान है उदे च भी गिरावट दर्ज हुई। ते अगो दोस्तों जड़ी जानकारी सामने आ रही है वो IMD वालों कहा जा रहा है कि पंजाब च जड़ी बारिश हुई है किते ना किते इहनूं प्री मानसून मनिया जा रहा है कि पंजाब दे विच ए प्री मानसून दी एंट्री हो गई है वीरवार नूं ते कई इलाकियां च जड़ी बारिश हुई है गरज चमक हुई वेख मिले है। तो लुधियाना पटियाला जलंधर समेत कई सारे जिहड़े जिले ने उत्थे गर्मी तो लोगों नूं राहत मिली है। पूरे पंजाब भर च ही ऑरेंज अलर्ट जिहड़ा जारी किया गया अज लई भी मौसम विभाग वालों ते अगे जिहड़ा कहा जा रहा हाले कि 7 दिन जिहड़ा है वह मौसम इवें

0: जड़ा है वो अपने देखा जाएगा कि क्या जा रहा है कि मौसम दे विच इस तरह ही जड़ा है वो हल्की कितना कितने बारिश जरूर आने वाले दिनों च भी देखी जाएगी ते राहत मिलन दे आसार 17 जून तक क्या जा रहा है दोस्तों कि 17 जून तक मौसम जड़ा है वो इंज ही बनया रहेगा ते लोग भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी तो परेशान से तो जिदे नाल हुन किते ना किते ए राहत मिल रही क्योंकि जेकर असी मौसम की गल करिए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बदलाव है देखने च तो उहदा किते ना किते रीज़न जड़ा है वो ग्लोबल वार्मिंग है क्योंकि पेड़ जड़े ने वो कट्टे जा रहे ने दरख्त है नहीं तो जिदे करके गर्मी जड़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मौसम का कितने पता भी नहीं लग रहा हूँ एकदम ये भी जानकारी सी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होएगी सूखा रहेगा लेकिन जेकर बारिश होवेगी तो वो जड़ा टेंपरेचर है वो भी डाउन हो रहेगा एक मौसम जड़ा है वो जेकर गर्मी क्योंकि 45 डिग्री टेंपरेचर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टेंपरेचर है और यदा जड़ा रीज़न है कितना कितने जड़ी वजह है वो असी मनुखी हाँ क्योंकि कुदरत ना जो खिलवाड़ की जाती है फिर वो रिजल्ट जड़े ने वो असी देख ही लए ने पिछले साल भी तो कोशिश करिए कि पेड़ जरूर लगाइए क्योंकि असी पहला भी तो जानकारी दी सी कि बेशक जड़ा इनवायरमेंट डे है वो लंघ चुका है पर एक दिन नहीं है सिर्फ जिस दिन असी वातावरण बारे गल करनी है असी इस बारे रोज़ाना गल करनी है तो कोशिश करना है उन्होंने गलों पर अमल भी करिए प्रोग्राम सोनी सवेर च इसी तरह जानकारियां का सिलसिला जोड़ा है वो जारी रहेगा फिलहाल लता मंगेशकर SP बाला सुब्रमण्यन की आवाज़ च मौसम के नाल रिलेटिड सुनो ये बहुत प्यारा जिहा गीत
1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's start the fun!

वाह जी वाह, गुरदास मान दी आवाज़ से तुसी सुन रहे सी, बहुत एंथुजियास्टिक जिहा गीत। ते दोस्तों वाकई सानू सीखना चाहिए है अपने बजुर्गों तो, क्योंकि उन्होंने जीवन च जो एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने जो कुछ सीखा है, उन्होंने तो सानू सीखने की लोड़ है। तो दोस्तों हुण घड़ी घड़ी दी जिहड़ियां सुइयां ने ना, वो इशारा कर रही ने प्रोग्राम सोहनी सवेर नूं इत्थे विश्राम देन दा। आस करते हाँ कि अज दा इह जिहड़ा सफ़र सी प्रोग्राम सोहनी सवेर च, सोहणे गीत, दिलचस्प गल्लां ते पॉजिटिव विचारां दा, इह तुहानूं पसंद आया होवेगा। दोस्तों हर दिन अपने नाल एक नवा मौका लेके आउंदा है, ते कुछ नवा सीखण दा, कुछ चंगा करन दा, ते किसे दे चेहरे ते मुस्कुराहट लिया था। जाते जाते बस इन्ना ही कहांगे कि अपने दिन की शुरुआत तुसी शुकराने नाल करो, मेहनत नू अपना साथी बनाओ, ते मुस्कुराहट नू कदी अपने चेहरे तो दूर ना होन दो। मैं तुहाड़ी दोस्त शुभिता हुण इस प्रोग्राम सोहनी सवेर चो तुहाड़े तो लैनी आ इजाजत। तुसी तंदुरुस्त रहो, चढ़दी कला च रहो, यही साड़ी दुआ है। ते जाते जाते इंजॉय करो यह बहुत सोहना जिहा गीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री

0: नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
2: We signed this year a free trade agreement with Europe.
3: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से

0: भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में PM ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं।

0: राष्ट्र की निर्माता परिवार की नींव मजबूत करती हैं। उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
4: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
5: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम महक पंजाबी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं। फिल्म एक कुड़ी पंजाब दी चो अमरिंदर गिल दा गाया। लो जी, तुसी भी इंजॉय करो इस सोहना जिहा गीत।

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पोल्स थाने तो बोल रहा हूँ।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेजा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे महक पंजाब दी ते हुन इस प्रोग्राम च असी तुहानू आकाशवाणी दे 90 सालां नू समर्पित एक सोहना जिहा गीत सुनाउण जा रहे हैं। लो जी, तुसी भी करो इंजॉय।

प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाबी। तो इस प्रोग्राम च आखिरी गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म दिल अपना पंजाबी चो हरभजन मान दा गाया गीत, तुसी भी सुनो।

हुण तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम महक पंजाबी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण पेश ने अज दिया मुख खबरां। केंद्र सरकार ने असम अते नागालैंड सरकार नाल कच्चे तेल अते कुदरती गैस की खोज अते उत्पादन लई एक 3-पक्षी समझौते ते हस्ताखर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों वल्लों सुरक्षा प्रणालियां अते वध रहे माली बुनियादी ढांचा खतरे बारे एक चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा संघर्षा दरमियान सप्लाई चेना अते कौबांतरी सहयोग दी लोड़ ते जोर दिता है। इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले विच हरियाणा दे विकास अते पंचायत डायरेक्टर दफ्तर दे तत्काली सस्पेंड सुपरडेंट नरेश कुमार नू गिरफ्तार किया है। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्रालय ने कहा है कि 2025-2026 विच देश विच बागबानी उत्पादन लगभग 3000 टन रहने का अनुमान है। हरियाणा सरकार ने सूबे भर के स्कूलों के 8वीं जमात के इतिहास के पाठक्रम विच सिख गुरुआ अते बाबा बंदा सिंह बहादुर का इतिहास शामिल किया है। पंजाब के खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग वालों बठिंडा विच 140 क्विंटल गैर कानूनी खाद जब्त अफसरां नूं अचनते चेत चेकिंग विच तेजी लियाउण दे हुकम। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करन दी गलबात विच मिली सफलता का हवाला दिंदे हुए ईरान दे नवे फौजी हमले रोके। मौसम विभाग वल्लों पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच अज गरज चमक दे नाल गड़ेमारी होण बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। विभाग ने चार धाम यात्रा ते जाण वाले श्रद्धालुआं अते सैलानियां नूं चौकस रहण अते अपनी यात्रा दौरान सावधानी वरतण दी सलाह दित्ती है। अते 10वां ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप अज तो शुरू। पहला मैच इंग्लैंड ते श्रीलंका दरमियान खेडिया जाएगा। ऐसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुनोगे आकाशवाणी जलंधर दी प्रतीक्षक समाचार यूनिट अते प्रोग्राम विभाग दी सांझी पेशकश विचार चर्चा। इस च तुसी सुनोगे NDA सरकार दे विशेष प्रोग्राम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उड्डान महाअभियान बारे। इस बारे प्रोग्राम के तहत पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा दे जिला मैनेजर शुभकर्मन सिंह नाल गलबात कीती है। असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ अते पंजाब खेतरी समाचार दे मुखी राजेश बाली ने त्याओ सुनदे आ खास पेशकश।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181

0: 298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साड़ी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 9:03 हो रहे ने ते हुन असी पेश करन जा रहे हैं गजलां। दोस्तों गल जदों दिल दी होवे तां अल्फाज जड़े ने ओ घट पै जांदे ने, कई जज्बात चुप रह के भी बहुत कुछ कह जांदे ने। गजलां भी दोस्तों उही कहानी सिखांदियां ने कि जो असी कह ना सकीए ओ सुरां विच वह जांदे ने। गजलां दी खूबसूरत महफिल च तुहाडा स्वागत है, मैं तुहाडी दोस्त शुभिता। आगाज़ करदे हां प्रोग्राम दा इस खूबसूरत गज़ल दे नाल।

दोस्तों, इसी गजला दे सफर चो हुन दो इजाजत। कुछ गजला ने दिल दिया गल्ला कीतियां, अज कुछ ने यादा नू छेड़िया ते कुछ ने जिंदगी नू एक नवे अंदाज नाल वेखन दा मौका दिता। दोस्तों, गजला दी सब तो सोहनी गल यही है कि हर शेर सुनन वाले नू अपनी कहानी जिहा लगता है। हुन इस गजला दे प्रोग्राम चो दो इजाजत। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ੁਭਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते टीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। फिलहाल साडी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक इस वेले सवेर दे 10:03 हो रहे ने ते हुण वेला है जी प्रोग्राम पेश करन दा। हलो फरमाइश, लाइव फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकदे हो। उदे तुसी नंबर डायल करना है 0181 23 42 173। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च करो शिरकत ते सुन सकदे हो तुसी इस प्रोग्राम च अपने मन पसंदीदा गीत। फिलहाल इस प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां किशोर कुमार वल्लों गाए इस गीत दे नाल।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे है जी हैलो फरमाइश ते लाइव फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो। उदे लई नंबर नोट करो जी, नंबर है 2813।

0: 74 ए नंबर डायल करो, एरिया कोड मिला लो 0181 28 130 74। एक बार मैं फिर तो नंबर दस दवा 0181 28 130 74। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते सुनो अपने मन पसंदीदा गीत। फिलहाल इस प्रोग्राम च हुन अगला गीत सुनान जा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी दा गाया फिल्म तकदीर चो, बहुत सोहना जा गीत है, करो इंजॉय।
1: जब जब बहार आई

तकदीर फिल्म चो मोहम्मद रफ़ी दा गाया गीत तुसी इंजॉय कर रहे से प्रोग्राम चल रहे जी। हलो फरमाइश तो लाइव फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो। उदे लिए तुसी नंबर डायल करना है 0181 28 130 74। एक बार फिर तो मैं तुहानू नंबर दस देवा 0181 28 130 74। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते सुनो अपने मनपसंदीदा गीत। फिलहाल अगला गीत सुनान जा रहे हैं वक्त फिल्म चो आशा भोसले दा गाया गीत, तुसी भी सुनो।

0: वक्त फिल्म था आशा भोसले दी आवाज़ च। तुसी सुन रहे सी इस सोहना जहा गीत ते प्रोग्राम चल रहा है हलो फरमाइश ते आओ जानते इस प्रोग्राम च सब तो पहली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हलो
1: मैडम नमस्कार,
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: मैं सोहन लाल बोलता हूँ, पिंड सलामवाला जिला फाजिलका तो। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: शुक्रिया जी।
0: हाँ जी, केड़ा गीत सुनोगे जी फिर तुसी?
1: मूवी है दो रास्ते, रेशमी जुल्फें शलपती आंखें।
0: ठीक है जी, रफ़ी दा गाया, मोहम्मद रफ़ी दा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई,
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: शुक्रिया थोड़ा भी।
0: धन्यवाद जी। दो रास्ते फिल्म चू रफ़ी दा गाया गीत, लो जी तुसी भी इंजॉय करो, तो तुसी भी अपनी फरमाइश सानू दस सकते हो। लिए जी प्रोग्राम च तुसी शिरकत करो, वो किवें करनी है? नंबर डायल करके, नंबर है जी 0181 28 130। ये नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते अपनी मनपसंदीदा गीत सुनो।

दो रास्ते फिल्म चों रफी दा गाया गीत तुसी सुनिया, बहुत सोहना। ते प्रोग्राम चल रहे जी, हैलो फरमाइश। ते एक इंपॉर्टेंट जिहड़ी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करनी है कि कुछ टेक्निकल एरर करके जिहड़ा विच साडे लिसनर्स दी कॉल साडे तक पहुँच रही ने लेकिन कनैक्ट नहीं हो पा रही, उहदे लिए असी माफ़ी चाहवांगे। लेकिन असी कोशिश इत्थों पूरी कर रहे हैं, ते तुसी भी कोशिश करते रहना। 0181 28 130 74 एंड नंबर डायल करते रहो, इधरों असी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असी तुहाडियां कॉल्स जिहड़ियां ने ले सकी इस प्रोग्राम च। ते प्रोग्राम च सोहणे सोहणे गीत पर असी तुहाडे लिए जरूर प्ले करते रहांगे। फिलहाल अगला गीत असी तुहानू सुनाण जा रहे हैं रेड फिल्म चों, राहत फतेह अली खान की आवाज़ च। तुसी भी इंजॉय करो ये गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता ली 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 कीता जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहा है हैलो फरमाइश। तो इस प्रोग्राम च अगला गीत सुनान जा रहा है तुहानू अरिजीत सिंह दी आवाज़ च। फिल्म है ए दिल है मुश्किल। इस फिल्म चो सुनो ए बहुत सोहना जगी।

प्रोग्राम चल रहे जी। हेलो फरमाइश। तो इस प्रोग्राम च अगला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी दा गाया, फिल्म जीने की राह चो ये गीत है। बहुत सोहना जहा गीत है, तुसी वी इंजॉय करो ते कोशिश करते रहो। नंबर डायल करो 0181 2828 1374। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो। असी भी इतों पूरी कोशिश कर रहे हैं तो तुसी भी कोशिश करते रहो। फिलहाल मोहम्मद रफ़ी दा गाया गीत इंजॉय करो।

0: फिल्म कुछ कुछ होता है दाए गीत तुसे सुन रहे सी ते प्रोग्राम चल रहा है हेलो फरमाइश। आज असी माफ़ी चाहवांगे क्योंकि असी बहुत सारे लिसनर्स दी कॉल्स जड़ी नहीं ले पाए, लेकिन जांदे जांदे कोशिश एक बार फिर तो कामयाब हो गई है। साडे नाल लिसनर जुड़ चुके ने, आओ जानते हैं कौन ने। हैलो, सत श्री अकाल जी, तुहाडी भी कोशिश कामयाब हो गई है, इधरों साडी भी हो गई है, तुहाडे नाल गल हो गई है, बहुत बहुत स्वागत है।
1: गाना
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: पसंद है जी मैम, हेरा फेरी का ये वक्त की हेरा फेरी है।
0: ठीक है जी,
1: बहुत बहुत प्रभावना तरक्की वाके जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ी ब्लेसिंग्स ले ते धन्यवाद तुसी प्रोग्राम च शिरकत की।
1: ओके
0: ओके सो अज बहुत सारे लिसनर्स दी असी कॉल्स जिहड़ियां ने ओ अटेंड ते कर पाए, पर कुछ टेक्निकल एरर करके विच्चों ही कॉल कट गई, कईयां दी कॉल्स जिहड़ियां ने ओ पहुंच ही नहीं पाईयां, ते कईयां दे नाल गलबात हो पाई। जिन्हां दे नाल अज गलबात नहीं हो पाई है, नहीं कनेक्ट हो पाए, उन्हां दी जिहड़ी असुविधा हुई है जिहड़ा इस प्रोग्राम च, उहदे लई असी माफ़ी चाहवांगे। लेकिन कहिंदे ने कि

कोशिश करदे रहो, कोशिश दा जिहड़ा नतीजा है, जिहड़ा कई बार एफर्ट्स जिहड़े ने ओह काम आ जांदे ने ते सफलता मिल जांदी है, जिद्दां कि साडे कई लिसनर्स नूं अज मिल भी गई है शायद, ते साडी वी इधरों कामयाब रही है थोड़ी थोड़ी कोशिश, क्योंकि असीं पूरी कोशिश कर रहे सी कि इह जिहड़े टेक्निकल एरर्स ने इहनां नूं हटा के असीं तुहाडे नाल जुड़ पाईए, तुहाडी कॉल्स लै पाईए। सो असुविधा लई सानूं माफ़ी दो, ते प्रोग्राम हैलो फरमाइश इस आखिरी गीत दे नाल ही मैनू अपनी दोस्त शुभिता नूं इजाजत दो। तुसी सारे चढ़दी कला च रहो, तुहाडा अज दा दिन बहुत सोहणा बीते, इस जिहड़ा मौसम ने तब्दीली लई है इवें ही तुहाडियां जिहड़ियां जिंदगी च छोटे छोटे जिहड़ियां मुश्किलां ने ना ओह वी रब करे फटाफट खत्म हो जाण, सारे खुश रहन, चढ़दी कला च रहन, ते प्रोग्राम हैलो फरमाइश इस आखिरी गीत दे नाल मैनू इजाजत दो। फिलहाल किशोर कुमार ते महेंद्र कपूर की आवाज़ से जाते जाते सुनो ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमेरिकी सीनेटर और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हाँ जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनते हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। सुनते हाँ अज दे प्रोग्राम दा पहला गीत गुरु रंधावा ते असीस कौर दी आवाज़ विच।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 12:05 हो रहे ने। आओ सुनते हाँ परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: सिमरन, मैं अनुराधा। हाजिरा जी
1: अनुराधा की गल करिए, कल ना इंजो या मैं
0: जी
1: शामी बाजार गई, मैं
0: जी
1: थोड़ी लेट हो गई। मैं कहा भी छुट्टियां ने तो थोड़ा फिक्र घट हुंदा है घर दा, कम दा, ये कह लो भी बाजार हो आओ,
0: जी जी
1: है ना। मैं जदों बाजार गई तो भाई उहदे बाद वो ज्यों झक्खड़ जिहा बदल आए, मीह नेरी, मैं नेरे च आई हां वापस। ते मैनू तोबा तोबा, नाले डर लगे, नाले आए भी कोई कहूगा भी ये सियाणी बयाणी आ, ये पढ़ी लिखी आ। है
0: वाकई गल ये है कि वो जिहड़ा झक्खड़ कल रात आया, हनेरी आई है, उस तो बाद इन्नी तेज़ बारिश हुई है, वाकई वो बहुत कह लो कि तेज़ बारिश सी। पर गल ये है कि सिमरन जी, तुसी खबरां नहीं सुनते या फिर कह लो कि गूगल ते सर्च नहीं करते अजकल, जदों सारा तुहानू वैदर दा वो दस दिंदे ने।
1: ओहो, यही तो मैं गल कर रही हूँ भी अपने आप ते गल आए भी मैनू किन्ने सियाणी बयाणी कहना है।
0: जी
1: सारा कुछ वेख वट के पता भी चल कोई नहीं, मैं ते आ ही जाना है, चल
0: जी
1: कोई नहीं, अखों परोखे करती है इस गल नू कीता है ते मुड़ के भुगतना पिया। इन्नी नेरी, डर
0: जी
1: केड़ी गल दा, कोई टैन टुट जाए, कोई खास करके जेड़े दो पहिया वाहन ने साडे, है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आना जाना किड्डा औखा, हवा इन्नी तेज, झक्खड़ पूरा, तो फिर नाल ये हुंदा ना कि दिखदा भी ओना की है फिर बाद च इन्नी
0: जी।
1: नेरी च।
0: पर गल ये है ना, सिमरन जी, तुहानू इस गल का एहसास हो गया कि हुण अगे तो ये गल नहीं करनी। जिस तरह भी तुहानू पता लगता है ना कि अज मौसम है जिहड़ा वो खराब है या की होण वाला है ना वैदर दे विच, ते थोड़ा जिहा ध्यान रख के ही घरों निकलना है।
1: सही आख्या अनुराधा जी, मैं जिहड़ा फायदा लिया सी ना भी छुट्टियां ने,
0: जी
1: ते सारिया लई देखो जो मेरे ना होया भी सब ये समझ के चलन, जे छुट्टियां ने खास करके जिस दिन मौसम च थोड़ा जिहा भी तुहानू पता लगता है कि बदलाव है, बहुत ज़्यादा गर्मी है
0: जी
1: या फिर मीह हनेरी दी इन्फॉर्मेशन तुहानू दिता है आई है, ते उस दिन बाहर ना ही निकलिए ते चंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो गल तुसी छुट्टियां दी कीती, बच्चियां दियां छुट्टियां चल रहियां ने, और खास तौर ते आपां हर रोज़ जिस तरह गल करदे हां बच्चियां छुट्टी, पहलां भी गल कीती है कि इन्हां छुट्टियां दे विच बच्चियां दा जिहड़ा ध्यान है मामा रखदियां ने, है ना, उहनां नूं टाइम जिहड़ा है उहनां नाल ज़्यादा बिताउण दा समां है जिहड़ा मिलदा है, ते पर घूमण फिरन दा वी जिहड़ा समां इही है।
1: सही गल आखी, ते बच्चे नाल ही जुड़िया, अज बड़ा खास दिन है।
0: जी
1: अज साडा जिहड़ा दिन है वह हैगा है ए अगेंस्ट रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, ए
0: जी
1: थीम है अज दे दिन दा। संयुक्त राष्ट्र ते अंतरराष्ट्री मजदूर संगठन वालों ये दिन नू असी मनाउने आ, खास करके 12 जून जिहड़ी है,
0: जी
1: ठीक है। ते जिहड़ी थीम है वह कहिंदे भाई बाल मजदूरी नू लाल कार्ड। अनुराधा जी दरअसल इस तरह होंदा कि लाल कार्ड जदों असीं खेड दे मैदान च हुंदे आ,
0: जी
1: एक वारी गलती कीती, दो वारी कीती या फिर कोई बहुत वड्डी गलती करती ते खिडारी नू ना लाल कार्ड रैफरी दिखा देंदा भी चल बाहर।
0: जी
1: ते मैनूं लगदा है कि इस वार जिहड़ा थीम दित्ता है ना वो बहुत अच्छा दित्ता है।
0: बिल्कुल जी
1: और ये जो थीम की गल करते हैं उस दे विच कहिंदा है कि बाल मजदूरी नू ते लाल कार्ड है, ते उस दे नाल ही वो कहिंदा है कि बाकी बच्चियां वास्ते असी जो करना है उन्हां दी पढ़ाई, उन्हां दी सेहत सेहत समाजिक सुरक्षा उन्हां दी, उस दे उत्ते ध्यान देने दी लोड़ है।
0: बिल्कुल जी, क्योंकि बच्चे दे लई पढ़ाई है जिहड़ी या फिर खेडण दा उहदा अधिकार हैगा, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज दे विच असीं देखते हैं ना सिमरन जी कि अज कल आपां अपने हिंदुस्तान दी गल करदे हाँ, छोटियां छोटियां दुकानां ने, ढाबे ने, घरां दे विच, है ना, जदों असीं देखते हैं कि बाल मजदूरी है जिहड़ी, है ना, वो करवाई जाती है, जो कि बहुत ही वड्डा अपराध है। तो इस नूं रोकण दे लई ये जिहड़ा जागरूकता वाला दिवस असीं अज मना रहे हाँ, तो उहदे लई वी है कि हर एक दे विच जागरूकता लियांदी जावे कि इस चीज़ नूं खत्म कीता जाए, बाल मजदूरी नूं खत्म कीता जाए, तां जो साडा देश है जिहड़ा वो अगे तो अगे होर विकसित हो सके।
1: सही गल आखी, कहिंदे ने कि बच्चों के हाथ विच किताबां होन,
0: जी
1: उन्हां दी अखां विच सुपने होन, मजदूरी नहीं सिक्ख्या उन्हां दा अधिकार होवे।
0: बिल्कुल जी,
1: अज दा दिन जेहड़ा है, सिर्फ अज ही नहीं, मैनूं तां लगदा अनुराधा
0: हर
1: जी
0: रोज़
1: हुण साडा वो वेला आ गया असीं राइट टू एजुकेशन जेहड़ा उहनूं पूर्ण तौर ते अप्लाई करिए
0: जी
1: परिवार च ते परिवार तों बाहर।
0: बिल्कुल जी। ते इसी सिलसिले नूं पर अगे वधावांगे, असीं अपने श्रोतियां लई खास मुलाकात भी लैके आए हैं, पर उस तो पहलां एक गीत सुनांगे।

0: प्रोसेस है मैडम ये, जिन्होंने से कही है भी जंग
1: बिल्कुल
0: जारी है,
1: जी।
0: ये चलता ही रहना है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। सरकार वालों बड़े उपराले चलाए जा रहे ने, लगातारता उस वादा भी किया जा रहा है, चेंजेस की जा रही हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स लैके, तो जिमें जिमें सरकार को फीडबैक मिलती है उस हिसाब न वो स्कीम्स में चेंज करती है, ताकि ग्रास रूट लैवल तक जी है सरकार की स्कीम पहुँच सके सरकार।
1: जी ते तुसी ए चाइल्ड लेबर दे अगेंस्ट किन्ने कु साल हो गए काम करदे तुहानू?
0: पर्सनली मैं 13 साल हो गए ने जी डिपार्टमेंट च,
1: 13 साल हो गए
0: 13 साल तो मैं काम कर ही रहा
1: जी।
0: इस
1: जदों
0: क्षेत्र।
1: तुसी शुरू कीता सी और अज दी पोजीशन, क्या कोई फर्क आया है? कोई अवेयरनेस दा फर्क आया है या कोई चाइल्ड लेबर दी गिनती च फर्क आया है?
0: अवेयरनेस तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल फर्क आया,
1: जी
0: बिल्कुल फर्क आया अवेयरनेस च, बट वो क्योंकि मैं तुम्हें जिदा पहला क्या कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर्डल्स
1: बिल्कुल
0: हर्डल्स
1: जी
0: जिदा जिदा तुम चलते हो समय तुम्हें ऑब्सटेकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, जिहड़ा असी प्रोग्रेस किया होंदा है कई बार वापस
1: जी, वापिस चला
0: चला
1: जाता है।
0: जाता है, तो बिल्कुल अवेयरनेस तो बहुत हुई है जी। एक साडा पंजाब सरकार का ही उपराला है जी, उस असी जून के महीने च एंड नवंबर के महीने च एक एक हफ्ता डेडिकेटेड तौर पर सिर्फ पूरा महकमा हर काम छड़ के सिर्फ इसी काम पर लगता है
1: जी
0: भी एंटी चाइल्ड लेबर जी है एक्टिविटीज़ अवेयरनेस इंस्पेक्शंस चलानस FIRs होर महकमे के नाल मिल के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनी हुई है साड़ी,
1: जी
0: हर डिपार्टमेंट जिहड़ा स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना नाल लेंदे हैं, तो वो एक हफ्ता जून के महीने तो एक हफ्ता जिहड़ा नवंबर के महीने च असीं स्पेसिफिक यही काम करते हैं। तो पिछले 10 सालों मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मैं 2012 शुरू किया 2019 तक काफ़ी फर्क आया सी,
1: ओके
0: काफ़ी अवेयरनेस ही फैली सी, काफ़ी हैवी फाइन्स हुए सी, ते जागरूकता भी बहुत फैली सी, ऐसी सोशल कैंपेन्स थ्रू सोशल मीडिया से बड़ी जागरूकता भी फैलाई, बट किसी कारणवश कोविड के दौरान वो काफ़ी उस चीज़ पर मतलब
1: रोक लग
0: रोक
1: गई।
0: लग गई कुछ इकोनॉमिक रीजंस करके,
1: जी जी
0: असं हूँ महसूस करते मैं थोड़ा जाओ पिछे हो गया, बट असं फिर भी डिपार्टमेंट भारत सरकार पंजाब सरकार वचनबद्ध है लगी हुई है जी, हर डिपार्टमेंट की सहायता नाल इन्हू रोकण की इन्हू खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
1: ते इस प्रोसेस दे दौरान तुसी बच्चियां नू, उना दे पेरेंट्स नू भी मिले होगे कई बारी, ते ओ पेरेंट्स दी की सोच है? कि ओ खुद चाहते ने उना दे बच्चे काम करन, फोर्सफुली उना तो काम करवांदे ने, या बच्चे अपनी मर्जी नाल कर?
0: यदा कोई मैम कोई जनरल जवाब नहीं हो सकता,
1: जी,
0: एवरी केस
1: सिचुएशन डिफरेंट
0: एवरी
1: होगी।
0: केस, जे मैं 100 केस भी डील किए हैं मतलब फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं कहना भी एवरी केस इज़ यूनिक, एवरी केस इज़ यूनिक, कई थावां ते फोर्सफुली हुंदा है,
1: फोर्सफुली बच्चों तो कराया जाता है,
0: हाँ
1: माँ बाप
0: फोर्सफुली
1: कराया
0: हो
1: है।
0: सकता है, उस एक वड्डे तौर पर लीगल माफिया कई बार काम करते हैं, इंटर स्टेट ज़्यादा पंजाब के बच्चे घट होंगे ज़्यादा, होर स्टेट्स तो बच्चे जड़े
1: बच्चे
0: ने
1: इधर आके काम
0: आ रहे
1: करते
0: होंगे
1: हैं
0: ने काम
1: जी।
0: करते हैं, तो सिर्फ साडे डिपार्टमेंट का रोल ना रह के एक जिन्होंने अं कहते हैं एक क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ एलिमेंट भी ये जुड़ जाता है, माफिया जुड़
1: जी
0: जाता है जो
1: जी
0: बच्चों इतने लैके आता है, तो उ फिर पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा व्डा रोल आता है, प्रशासन का बड़ा व्डा रोल आता है,
1: जी
0: होर डिपार्टमेंट्स का बड़ा व्डा रोल आता है, एक तो यह कारण है भी करवाया जाता है, बट एक कारण यह भी है जिदा मैं पहला दस्या है भी गरीबी है अनपढ़ता है लैक ऑफ अवेयरनेस है अपनिया राइट्स का उन्होंने नहीं पता है,
1: नहीं पता
0: तो ये बड़ा नॉर्मल होंगे उन्हें भी काम करना,
1: काम करना।
0: हाँ तो वो कई बार उन्होंने ये पता ही नहीं है कि असी काम नहीं करना है, असी तो स्कूल जाना है,
1: रूटीन दे विच ही शामिल है, उना दे खून च ही
0: हाँ
1: शामिल है
0: बट
1: जिस
0: एक
1: तरह
0: मैं
1: उना
0: होर
1: दे।
0: गल ये कहूँगा कि जो असी बच्चे नाल इंटरेक्ट करते हैं शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जिहड़ा स्कूल नहीं जाना चाहता, जाना तो सारे ही चाहते हैं, शायद उन्होंने माइंड च नहीं आते ये गल आती भी असी स्कूल जाना है, जो उन्हें काउंसलिंग करो थोड़ा जा उन्होंने मतलब
1: उना नू लगदा है कि
0: कॉन्फिडेंस,
1: असी बने ही नहीं शायद इस
0: हाँ उन्होंने
1: वास्ते।
0: थोड़ा कॉन्फिडेंस चले जाता है,
1: जी
0: फिर वो मतलब महसूस करते हैं दस दिन अपने दिल की गल भी असं जाना चाहते हैं, तो इदा मैं हर केस जरा यूनिक है आप जनरली नहीं कह सकते भी
1: जी
0: ये
1: जी जी एक इतने सवाल होर आंदा है, और मैं भी कई जगह पे डील किया है, एक चीज़ दिखी है कि मैनू इंज लगता है कि बच्चे इजी टारगेट होंगे ने, इस वास्ते इंपलॉयर्स इन्हों चूज़ करते हैं। तो तुम ये की कहोगे, क्यों इंपलॉयर बच्चे नू चूज़ करते हैं काम करने वास्ते, वो
0: मैम,
1: किसी व्डे नू नहीं लगा
0: ये
1: लेंदे?
0: तुहाडा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा वधिया सवाल है जी, ये भी मेरे काम करने के दौरान मैं महसूस किया है भी
1: जी
0: कई थावां ते इंपलॉयर्स बच्चों नू जान के रखते हैं, उसका
1: जी
0: एक कारण है जी, पहला कारण तो यह है कि बच्चे नू तुसी डांट सकते हो
1: डरा
0: डरा
1: धमका
0: सक
1: के।
0: सकते हो तमक
1: हाँ,
0: धमका सकते हो, दूसरा कारण यह है कि बच्चे नू तुसी पैसे घट दे सकते हो,
1: सब तो वड्डा कारण मेरे
0: हाँ
1: ख्याल
0: सब तो
1: आई
0: वड्डे
1: है।
0: ही है भी उन्हों तुसी मिनिमम वेजेस जो होंगी सरकार वालों तय की
1: जिथे
0: गई
1: किसी वड्डे नू तुसी 500-700 दे रहे, उन्हें 100-200
0: 100
1: दोगे
0: दो
1: ते
0: सौ च
1: जबरदस्ती
0: मिनिमम
1: डरा के
0: हाँ
1: काम करा
0: है ना,
1: लोगे।
0: डराओगे धमकाओगे, इस तो अलावा उस तो ओवर टाइम भी करवा सकते हो तुसी डरा के, उन्हें
1: जी
0: तो पता ही नहीं अपने राइट्स का, उन्होंने तो जो
1: बिल्कुल।
0: कहता उन्हें वो करना बेचारे ने डर के वो करेगा, तनख्वाह भी घट मिलेगी उन्होंने कई बार नहीं भी मिलती, मार पिटाई

0: ग्रोथ हो
1: शरीर
0: जाना।
1: तो भी हो
0: हाँ,
1: गया,
0: शरीर तो भी चले गए,
1: हाँ जी, तो
0: मेंटली भी
1: डेवलप नहीं
0: अपसेट हो
1: हुए।
0: गए, तो भी डेवलप हो गए। तो
1: जी जी
0: ये जदों मेंटली ते फिजिकली तुसी डेवलप नहीं हो रहे थे, इस तो बाद तो फिर कुछ रह ही नहीं गया।
1: फिर कई तरह दी बीमारियां
0: बीमारियां वो फिर
1: एज दे
0: सप्लीमेंटरी।
1: नाल नाल,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ते वो
0: बिल्कुल
1: बीमारियां दा प्रॉपर इलाज नहीं हुंदा,
0: नहीं
1: ते
0: भाई।
1: कई वारी आपां ते देखे कि ऐसी सिचुएशन मौत तक लेके चली जाती है
0: हाँ जी,
1: बच्चे
0: कई
1: दी।
0: एक्सट्रीम केसेस इदा हुंदा है कि कोई
1: जी,
0: जो है।
1: ते एक कई काम भी ऐसे होंदे ने जिन्हां च बच्चे लगे होंदे ने, जिन्हां नूं आपां हजार्डस जड़ी वर्क कहिंदे आ, ओहदे विच जड़े बच्चे लगे होंदे ने, उन्हां ते उस काम दा ही उन्हां दे शरीर ते असर हो जांदा है,
0: बिल्कुल
1: ते
0: बिल्कुल
1: ओहदे वास्ते कोई साडा स्पेशल लॉ हैगा?
0: मैम, उही मैं तुहानूं पहलां भी दस्या सीगा वी 14 साल जो कानून कहिंदा है,
1: जी,
0: चाइल्ड लेबर जिहड़ा एक्ट है, वो ये कहिंदा वी 14 साल तक तां कोई बच्चा काम कर ही नहीं सकता,
1: काम ही नहीं,
0: चाहे
1: कोई टाइप दा
0: किसी
1: भी
0: तरह
1: नहीं।
0: भी काम है, चाहे
1: जी
0: हजार्डस है नॉन हजार्डस है, काम नहीं कर सकता। ईवन कि जिन्हें 18 साल भी कंप्लीट नहीं किए, वो हजार्डस काम जिहड़ा केमिकल्स
1: नहीं
0: नाल
1: कर
0: रिलेटेड
1: सकते।
0: जो हजार्डस काम है वो भी नहीं कर सकता।
1: ते हजार्डस जड़े वर्क ने उन्हां दे विच की आ सकदा है?
0: मैम लिस्ट बहुत बड़ी है जी, केमिकल्स दी फैक्ट्रीज ने, या माइंस ने,
1: अच्छा,
0: या ईटरीज ने, है
1: ओके,
0: ना, इन्हां च आपां जे बच्चा
1: मतलब
0: तो
1: जिदे विच किसी भी तरह दा कोई खतरा
0: कोई
1: होए,
0: खतरा हो, बेसिकली जे किसी कोई हजार्डस काम है, कोई खतरा है बच्चे
1: मतलब
0: नूं,
1: वो खतरे दे नाल जुड़े
0: खतरे
1: हुए
0: नाल
1: ने।
0: जुड़िया है, वो पूरा डिफाइन कीता गया
1: जी
0: एक्ट च,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: लंबी लिस्ट है। ते उन्हां च जे बाहर कोई है, कोई अदारा काम है, ओहदे च सिर्फ अडोलसेंट 14 तो 18 साल दे बच्चे
1: वही कर
0: रेगुलेटेड
1: सकते,
0: फॉर्म च काम कर
1: वो
0: सकते हैं
1: भी
0: वैसे।
1: वो उन्हां नूं कुछ घंटे डिफाइन
0: हाँ,
1: होणगे,
0: 4 घंटे तो
1: ते
0: बाद कर नहीं सकते जी, दो घंटे
1: हाँ,
0: तो बाद, 2 घंटे तो
1: ते
0: बाद
1: इन्ना
0: ब्रेक,
1: उन्हां नूं पे करना
0: हाँ
1: पएगा,
0: ब्रेक
1: ये
0: मिलनी
1: सारी
0: जरूरी है।
1: कंडीशंस
0: हाँ,
1: होणगियां।
0: ते वो जेकर किसी ने रखा भी है, वो डिपार्टमेंट नू रिपोर्ट करेगा कि इसे एडोलेसेंट नू रखा हुआ है, इदा नहीं रख सकते।
1: ते एक्चुअली की है कि बच्चियां तो काम करवाना किसी भी इंप्लॉयर वास्ते, सच्ची गल डायरेक्ट अगर कहा जाए तो शोषण है। ते इस शोषण दे अगेंस्ट अगर किधरे कोई देख लैंदा है भी इत्थे बच्चे काम कर रहे ने, ते क्या वो दे अगेंस्ट आवाज उठा सकदा है, कोई कंप्लेंट कर सकदा है? अगर करनी है तो आम बंदे नूं आई नहीं पता किथे करनी है, ये साडे श्रोतियां नूं दसो कि कंप्लेंट किथे कीती जा सकती है।
0: एक चाइल्ड हेल्पलाइन मैम, एक चाइल्ड हेल्पलाइन जिहड़ी है
1: जी
0: बनाई गई है, वो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098,
1: जी
0: वो उस चाइल्ड लाइन ते तुसी कॉल करके जिहड़ी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो
1: अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कि इत्थे
0: अगेंस्ट
1: बच्चा
0: चाइल्ड
1: काम
0: लेबर,
1: कर
0: कि
1: रहा है।
0: मैं भी जो भी कंप्लेनेंट है भी मैं फलानी तरह एक बच्चा काम करता देखिया, चाहे उहदी फोटो खिंच लवे या जिद्दां भी है, वो अपनी कंप्लेंट दे नाल लगा के उत्थे चाइल्ड हेल्पलाइन च दस सकता है, या फिर साडे ऑफिस एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जलंधर
1: जी
0: च, हर जिले च हुंदा है, उत्थे दस सकता है, या डीसी ऑफिस जाके कंप्लेंट अपनी दायर कर सकता, या साडे ऑफिस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर दे ऑफिस च जिहड़ा है आके अपनी कंप्लेंट दस सकता है। वो जिन्हें कंप्लेंट की है उन्हूं बिल्कुल असी गुप्त रखते हैं।
1: यही मैं पूछना
0: हाँ,
1: चाह रही
0: उन्हूं
1: सी।
0: असी गुप्त रखांगे,
1: जी
0: है ना, उहदी जानकारी जिहदे जिथे असी रेड करन जा रहे हैं उन्हूं असी बिल्कुल नहीं दसदे भी किसे होर
1: किसने
0: ने, किसने
1: कंप्लेंट की,
0: कंप्लेंट की
1: ये
0: है,
1: भी जरूरी है क्योंकि उन्हें भी खतरा हो
0: खतरा
1: सकता
0: हो
1: है।
0: सकता है जी,
1: जी
0: वो
1: जी
0: उहदी
1: जी
0: भी जिम्मेवारी मतलब प्रशासन दी हुंदी है भी इसे प्रोटेक्ट करना है ना। ते उस तो बाद एक साडे हर जिले च एक टास्क फोर्स बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, जिहदे च
1: जी
0: सिर्फ साडा डिपार्टमेंट नहीं, होर डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व ने, एजुकेशन है, मेडिकल डॉक्टर्स ने हुंदे ने इहदे च, फिर डिस्ट्रिक्ट जिवें मैं दस्सिया डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है जिन्हां दा बहुत अहम रोल हुंदा इहदे च, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जे लोड़ पैण ते तहसीलदार
1: जी
0: दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट नूं भी नाल लैंदे हां, ते एनजीओज नूं नाल लै के असीं, ते
1: ए काम करते
0: हाँ
1: हैं,
0: मौके ते जदों असीं बच्चा फड़दे हाँ, हर डिपार्टमेंट ने अपना जिहड़ा है
1: एक ना एक
0: एक्सटैंडिंग
1: कोई
0: ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनया होया है जी पंजाब
1: जी,
0: दा,
1: वो सारे
0: एसओपी, वो
1: आनगे।
0: असीं अपने वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर दे हिसाब नाल काम करदे हाँ।
1: जी
0: बच्चे दा मेडिकल हुंदा है, उहदे नाल मारकुट तां नहीं कीती गई, प्लस जे उहदे कोल उहदा एज दा प्रूफ नहीं है तां एज डिटरमिन कीती जाती है थ्रू मेडिकल,
1: जी
0: मेडिकल बोर्ड वालों, फिर जे एज घट पाई जाती है फिर जिहड़ा ऑफेंडर है उहदे खिलाफ़ जिहड़ा एक्शन है
1: कार्रवाई
0: चलान
1: कीती
0: कीता
1: जाती
0: जाता
1: है,
0: है, या FIR कीती जाती है, एंड हैवी फाइन है जी इहदे च।
1: ते पनिशमेंट्स भी होंदियां ने।
0: पनिशमेंट हुंदी है जी, FIR हुंदी, जे तां तुसीं 14 साल तो थल्ले बच्चा नूं इंप्लॉय कीता होया, FIR होएगी, FIR होने तो बाद जदों चलान लॉन्च होएगा कोर्ट दे विच, 20 हज़ार तो लैके 50 हज़ार तक
1: फाइन दिता
0: जुर्माना
1: जाएगा।
0: है पर चाइल्ड, ते जे सबसिक्वेंट ऑफेंस तुसीं फिर दोबारा कर लेंदे हो, ऑफेंस तो बाद दोबारा एक बार फिर करते हो, फिर 6 महीने की कैद भी हो सकदी है।
1: ओके, तो सज़ा जड़ी वो काफ़ी भारी है। जरूरत की है कि अवेयर होंगी
0: अवेयर
1: कि
0: होंगे
1: असी पहले तो इस चीज़ तो अवेयर हुई है, अगर आप किसी बच्चे नूं कितने काम करते दे देखिए तो जरूर शिकायत करिए, साडा नाम नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि अवेयर इस तरीके नाल भी होना जरूरी है कि असी बच्चा तो काम ना करवाइए।
0: ना।
1: प्रदीप जी, एक होर चीज़ देखी है, तुसी भी आए हो हुण, जिवें चौंक चो निकलदे हाँ, सड़कां ते निकलदे हाँ, छोटे छोटे बच्चे कोई कई तो गड्डिया के शीशे साफ करते हैं और पैसे मंगते ने, कई लोग उवें ही पैसे मंगते ने, ते ये छोटे छोटे बच्चे तो मैनू लगता है काम फोर्सफुली कराया गया। कई जगह ते ट्रेनां दे अंदर देखा है कि एक औरत पांच पांच चार चार बच्चों नू लिजा रही है, बच्चे कई तरह का कुछ करके दिखा रहे ने ते पैसे मंग रहे ने, कोई गा रहा है, ते ए उन्हां दे अपने बच्चे ते हो नहीं सकते, मे भी कित्थों चुक के लियाए हुए ने, क्या इन्हां दे अगेंस्ट भी कोई एक्शन हो सकता है इहदे अंदर?
0: मैम, ये तुहाडा सवाल

0: जी
1: लो जी, गीत सी बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखती हाँ। बई अज कल जड़ा मौसम है ना, जे बनेरे ते बत्ती रखी ते कल दी जड़ी नेरी आई बुझ भी सकती है।
0: बिल्कुल जी,
1: मौसम ऐसा आ गया ते मौसम दी गल कर दे ना, अज जड़ी साड़ी अगली वणगी है ओ है गुणकारी रसोई। ते अज कल दे मौसम दे हिसाब नाल जे गुणकारी रसोई दी गल करिए ते अनुराधा, मेरे ते दिमाग च ना अंब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।
0: बिल्कुल जी, देखो फलां दा राजा है और मौसम दे हिसाब दे नाल असीं देखदे ना, जदों जांदे आं फलां दी दुकान ते या देखते हैं बाजार दे विच जा के, सारे पासे सानूं अंब ही अंब है जिहड़े ओह नज़र आउंदे ने।
1: अच्छा फिर अंबां दीआं इन्नियां किस्मां ने और असीं फलां दा राजा कहने, ते कहा जांदा है कि भारत साउथ एशिया जिहड़ा ना इस दा ए वासी है, नागरिक इत्थों दा है
0: जी
1: अनुराधा। मैं क्या थोड़ा जिहा अंबा बारे दस लईए, ते 4,000 साल तो असी अंब जिहड़ा ए ये है असी खा रहे हैं वन
0: जी
1: सवन्ना। छोटे लै लो, कच्चे लै लो, पक्के लै लो, है ना, कई ना ने
0: बिल्कुल जी,
1: किस्मां ने इहदियां, ते फायदे आ जिहड़े इहदे सेहत लई इस मौसम के हिसाब नाल बहुत फायदे ने। सब तो ज़्यादा जरूरी गर्मिया के दिन, गर्मिया के दिनों के वाद घट हो जाती है खांद्या,
0: जी
1: तो यदि चटनी बना लो तुसी, इहदे विच डाइजेशन नू पाचन शक्ति साड़ी जिहड़ी है वधाउंदा है।
0: बिल्कुल, और इम्यूनिटी नू वधाउण दे विच तां मददगार है ही, नाल ही नाल इहदे विच देखो विटामिन सी हुंदा है, विटामिन ए हुंदा है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने

0: और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी ज़रूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

रात 7:45 ते सुनोगे साडा उर्दू प्रोग्राम सबरंग। अज दे इस प्रोग्राम विच कलाम ए शायर डॉक्टर चमन अहूजा जी नू सुनन तो बाद गज़लां दा आनंद माणोगे।

इस दरमियान समाचार ते मुख समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार प्रसारित किते जाणगे। ऐसा साढ़े अज दिन भर च प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: तौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने खवातीन की क्यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते थे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वकार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं, जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें खवातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संगे बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतह मीटिंग कर रहे हैं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल्स इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने तालीमी, सनती और तिजारती सारिफीन पर खुर्दा पेट्रोल पंप से मोटर स्प्रिट और तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है और उनसे कहा है कि वो अपने ही सारिफ पंप से अपनी जरूरियात पूरी करें। ये फैसला मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के दौरान मकामी किल्लत से निमटने के मकसद से किया गया है। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि ये बंदिशें 90 दिन तक जारी रहेंगी। खुर्दा पंप्स को भी हिदायत दी गई है कि वो तेज रफ्तार वाला डीजल रोजाना महज 200 लीटर तक फरोख्त करे ताकि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी को रोका जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने खुराक और तकसीम आमा के महकमे के अफसरान के साथ कल एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद प्याज की सरकारी खरीद को मुस्तहकम और किसानों के लिए बेहतर मुनाफे को यकीनी बनाना था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि सरकारी खरीद की कम से कम यकीनी कीमत को बढ़ाकर 1650 फी क्विंटल कर दिया गया है, जो मंडी की मौजूदा कीमतों और स्टोरेज दर्जे की प्याज के लिए दरकार क्वालिटी पर मबनी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कीमतें तय करने के तरीके को भी बेहतर बनाया गया है ताकि सरकारी खरीद को मार्केट के हालात के मजीद मुताबिक बनाया जा सके। इत्तला नशरियात की वजारत ने टेलीविजन, रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसविदा अवाम की राय मालूम करने के लिए जारी कर दिया है। ये उसूल पिछले टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन और रेडियो खिदमात के लिए जारी मुख्तलिफ रहनुमा खतूत को जामे बनाने के लिए वजह किया गया है। ये उसूल हाल ही में नाफिज किए गए टेली मवासलात कानून 2023 के दायरे में वजह किए गए हैं। इन उसूलों का मकसद बहुत से मौजूदा रहनुमा खतूत की जगह एक वाहिद जाब्ता जाति फ्रेमवर्क तजवीज करना है। उसूलों का ये मुसविदा इत्तला नशरियात की वजारत की वेबसाइट पर शाये कर दिया गया है और लोग इस सिलसिले में अपनी राय और मशवरे 27 जुलाई तक भेज सकते हैं। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले

0: नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नज़रसानीशुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीके कार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। एक बयान में एजेंसी ने बताया कि ये तब्दीलियां गुज़श्ता बरसों के दौरान उम्मीदवारों से मिलने वाले फीडबैक की बुनियाद पर की गई हैं। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाव के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक्वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफेनी दुजैरिक ने कहा कि जनाब गुतेरस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों, शहरी जहाजरानी और इसकी आजादी के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के मारूफ निशानेबाज और कोच एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले साबिक खिलाड़ी जसपाल राणा का इंतकाल हो गया है। वो 49 बरस के थे। भारत की कौमी राइफल एसोसिएशन के सदर कालीकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक जसपाल राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF आलमी कप से भारतीय टीम की वापसी के दौरान बीमार हो गए थे। उन्होंने 2026 के पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी तौर पर कांसे के 2 तमगे जीतने में मनु भाकर की रहनुमाई की थी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मेक्सिको के जेपोपन में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला मेक्सिको से जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में खवातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरी श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। इस दे नाल ही सुनदे आं अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत अरमान मलिक दी आवाज़ विच।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं।

0: हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी

0: के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर आत्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने

0: उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:30 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां सोनिया आहूजा की आवाज़ विच लोक गीत, जिन्हां दा ढोलक ते साथ दे रहे ने बूटा राम, सारंगी ते साथ दे रहे ने सुखविंदर सिंह, मैडोलियन ते साथ दे रहे ने राहुल कुमार ते हारमोनीयम ते साथ दे रहे ने अजय सिंह। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ विच लोक गीत मेरे जिगर दिया तरखाना।

प्यार करना सिखाए नफरत का कोई जोर नहीं, प्यार करना सिखाए नफरत का कोई जोर नहीं, बस तू ही तू है इस दिल विच दूसरा कोई होर नहीं। प्यार दा ए दस्तूर दुनिया ते बने रहे, हाजिर है होस्ट लव लाइन मेरे हजूर प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां दे नाल। शुरुआत दे विच गल हो रही है प्यार दी, कौन कह रहे की कह रहे, सुन दे इस गीत विच।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल जी बच्चियां दा इसी तरह जिहड़ा इज्जत माण ओह बणिया रहे ते इसी तरह उन्हां दे नाल जिहड़ा खुशनुमा माहौल है ओह बणिया रहे। ते चिट्ठी है जी मोहम्मदपुर सोतर ढाणी रतिया तो जीवन सिंह बुक शंटी बुक सिमरन बुक कौशल्या राणी ते गुरशिंदर बुक बब्बू बुक कुलदीप बुक ते कीरत ते जशन ते सारा बुक परिवार। तो लिखण वाले ने जी चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल ते फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांदा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांदा ते मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन मट्टू जैन राजेश जैन अरुणा जैन अभिषेक जैन गौतम जैन रसगुल्ला जैन नगीना जैन संजीव सारिका ते मनोज ते समता ते अरहन जैन। फरमाइश इन्हां सारे की गुरदास मान की खूबसूरत आवाज़

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठिया मिठिया ते तुसी ट्यून किया हुए AIR पंजाब ते बिल्कुल असी अज गल की थी जी बच्चों की क्योंकि अज बच्चों के लिए एक दिन मनाया जा रहा दुनिया भर के कि उन्होंने को बाल मजदूरी ना करवाई जाए तो असी अज गल कर रहे हैं जी चिट्ठी की इस दी ते चिट्ठी के मैनू लगता है कि बच्चों ने चिट्ठी लिखी है कहें कि मामा जी है केर सिंह ते मामा जी चिन्नत राम आ ते मामा जी मोड़ ला लिया ते मामी हैगे आ गुरमीतो गगड़ वाले गगड़ तो इन्हां दी मामी जी आ गुरमीतो ते इह खुद लिख रहे जी चिट्ठी पवनाल हाजीपुर तो विजय कौंडल पूजा कौंडल ते आदिया कौंडल ते पिंड हैगे कोटली अबलो इन्हां ने अपना पूरा प्रोफेशन दिता है जी हमेशा की तरह श्री मुक्तसर साहब तो यह चिट्ठी है सीता राम केसरी उदय प्रताप सिंह कोटली देवी कोटली रूप सर्विस स्टेशन किंदा बराड़ बराड़ कहिंदे मैं मोटरां वाला ते रवनीत वीरेंद्र जसकरण गंग ते गगना कोठली ते लवी कहिंदे असी चित्रकार बन गए जी ते रशपाल टैटू आर्टिस्ट बन चुके हैं ते कोठली दीपू कोठली राणा ए डीजे वाले बन गया ते लिखण वाले हैं जी खुर्जा उत्तर प्रदेश तो तिलकराज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा ते चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा ते साधव शहर तो प्रकाश चौहान मनु प्रकाश प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान ते ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबर राही ते महराज जहां लिख रहे ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ते कनेरा

हल्ला पटियाला तो मुकेश बता, नीलम बता, नितिन बता, पलक बता, करण बता, गीतू बता, हार्दिक निहारका तिवंश बता। तो पिंड हैगा है जी खैरे का। तो सिरसा तो चिट्ठी इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुण, हनी लोट, तो दर्शन लोट। फरमाइश इन्होंने सारे दी हंटर डी की खूबसूरत आवाज़।

0: तू फुल ते मैं टाणी कोई ना खिल भी जावांगे बस तू अरदासा करया कर आपां मिल भी जावांगे आपां मिल भी जावांगे।
1: प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते बिल्कुल मीं तो बाद चाह मिल जावे तो बड़ा ही स्वाद आ जांदे ते गल मुलाकात दी हुंदी अपने दे नाल मुलाकात हो जावे तो सोने ते सुहागे वाली गल हो जाती है। तो इन्होंने जी जिन्होंने चिट्ठी लिखी है जी उन्होंने मैनू लगता है कि नाम ये भुल गए से विच जे वाड़ के नाम लिखे जी वो पढ़ नहीं हो रहे सही तरह तो नाम इन्होंने लिखे है जी बी आर नेथराम ते पाल मिस्त्री करनपुरी तो पिंड हैगा इन्हों का गोबिंदगढ़ माछी वाला श्री करणपुर राजस्थान तो चिट्ठी है। राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू जीनू मनु आदित्य भूमि राखी अमृत पड़वाल ते शिव सेठी करणपुरी ते समाय टुटेजा इन्होंने बहुत ही खूबसूरत टाइपिंग करके चिट्ठी भेजी पर विच जिहड़े नाम बड़े वो क्लीयर पढ़ नहीं हो रहे। तो सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो चिट्ठी है जी टी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा ते जयवीर सिंह ठाकुर ते डॉक्टर अमनदीप ते अनिल शर्मा कालका तो शुभ चंद्र बजाज बिट्टा बजाज ते साहिल ते मलोट कैंप तो सतीश मिगलानी सीमा मिगलानी विवान गुरचरण ग्रोवर ते वीर सिंह लाटी ते अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर ते अंबा चाहल लिख रहे ने चाहल कला नवा शहर तो चिट्ठी ते लिखण वाले ने जी मुख्तियार सिंह जी दे वल्लों ये चिट्ठी है। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी है जी पिंड अमीर शाह वाला तहसील जीरा फिरोजपुर तो मुख्तियार सिंह वारवल ते कहिंदे भी मेरे होर सारे बहुत सारे जिहड़े दोस्त मित्र आ वह भी इस चिट्ठी दे विच शामिल हो गए। तो इन्हां दे बहुत सारे दोस्त मित्र आ ते दोस्ती दी गल कर रहे आ गायक ते कहिंदे आ जी मैनू वधाइयां दो ते क्यों देईए वधाइयां सुणदे आ इस गीत दे विच।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते बिल्कुल टाइम दी ही गल हो रही है जी। टाइम बहुत अग्गे वधी जा रहा है जी। ते चिट्ठी लिखी है जी श्री मुक्तसर साहब पिंड किलियां वाली नेड़े मंडी डब वाली तो दर्शन सिंह सराह गुरमीत कौर अमर सिंह अमृतपाल कौर ते पोत्रा इन्हों का अभिजोत दोतरा इन्हों का गुरतेश्वर कुड़ियाणा ते गुणताज माना ते रिश्तेदार कहिंदे सुहाग परिवार कुड़ियाणा तो ते राम परिवार शेरावाला तो ते सारे दोस्त मित्र इन्हां दे नाल ते मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाणा तो चिट्ठी विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी अनीतापुरी ममता ते मेघा ते पूजापुरी गगन कपूर गुंजन कपूर लालसा कपूर रमा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी ते पालीपुरी डीसीपुरी ते अरनपुरी ते सारा परिवार बहुत ही खूबसूरत इन्हां दी चिट्ठी ते नहर किनारे पै जांदे ढाणी फत्ते वाली तो राजस्थान जिला इन्हों का हनुमानगढ़ हैगा। तो लिखण वाले ने जी राम सिंह रूपाल ते खुशप्रीत कौर ते

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स ते FM 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साडी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुणदे हां हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि औरतां विज्ञान शासन अते नवीनता विच भारत दे विकास नूं अगे वधा रही ने। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने नीट UG 2026 विच प्रीख्यार्थियों प्रति सुखावे बदलाव पेश किते, म्याद वधाई अते लेआउट नूं सोधिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा दीआं तैयारियां बारे उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी की है। सरकार ने संस्थागत अते व्यापारक खरीदारां दे प्रचून पंपां तों ईंधन खरीदण ते रोक लगा दित्ती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्याज की खरीद नूं वधाउण अते किसानां नूं बेहतर कीमत यकीनी बनाउण लई खुराक अते जनतक वंड विभाग दे अधिकारियों नाल इक मीटिंग की प्रधानगी कीती। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीति आयोग तो पंजाब दे सरहदी इलाकों की मुड़ सुरजीती लई विशेष पैकेज अते पंजाब नूं विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की है। पंजाब दे खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग ने 140 क्विंटल गैर कानूनी खादा जब्त कीतियां ने। ते बीते दिनी पटियाला दे डोगरा मुहल्ला विच हैपेटाइटस दे 5 मरीजा की पुष्टि होने तो बाद सेहत विभाग सरगरम है। पटियाला दे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने शहरी विकास बारे वधीक डिप्टी कमिश्नर नवरीत कौर सेखों तो जांच रिपोर्ट तुरंत मंगी है। अमृतसर च तेज़ हनेरी ते झक्खड़ कारण एक मंदिर की कंध डिगण नाल बजुर्ग की मौत हो गई है ते एक व्यक्ति जख्मी दस्या जा रहा है। मौसम विभाग ने अज तो 14 जून तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच बारिश तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मशहूर भारतीय शूटिंग कोच अते ACI खेडां दे साबका सोन तमगा जेतू जसपाल राणा दा देहांत हो गया, वह 49 साल दे सन। औरतां दा ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप अज तो शुरू हो रहा है। इस सन हुण तक दे मुख समाचार, असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण पेश है जी प्रोग्राम सुफियाना कलाम। अज दे इस प्रोग्राम विच सुनदे हां BS नारंग दी आवाज़ विच एक गीत।

संत का मार्ग तरम की पौड़ी को वडपागी पाए, जा सच्चा मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। ए गुरुवाक, मनुख मातर नू कुराहे पैण तो वर्जदे होए सच्चे मार्ग दे अनुसारी होण दी निवेकली जुगत दर्शाउंदे ने, पर ए सब कुछ अकाल पुरख प्रभु दी किरपा दृष्टि तो बिना नामुमकिन है। तांते फिर जिस दी ओट तकनी होवे उस दे चरना विच अरजोई करनी बनदी है। कर किरपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। सरवण करदे हां भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन की

कृपा प्रब दीन दयाला, तेरी योट पूरन गोपाला। इस शब्द का गायन कीता सी भाई तरलोचन सिंह ते उनादे रागी जत्थे ने। चौथे पातशाह साहेब श्री गुरु रामदास जी मनुख मातर नू सच्चे मार्ग ते चलन दी हिदायत करदे होए जिग्यासु जीव रूप स्त्री दी मनोदशा दा वर्णन करदे ने ते रब्बी रहमत दी जाचना करदे ने। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चालह गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। सरवण करदे हां भाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया।

0: राते क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। इस शब्द गायन कीता सी भाई ओंकार सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दर्शन सिंह।
1: तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले हैं गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानहु, हर हर कथा नराली। रहाओ हर के संत सुनो जन भाई, गुर सेवहो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जानहु आज के काली। हर के संत जपहो हर जपना, हर संत चले हर नाली।

संत सुनो जन भाई, गुर सेवहो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बंधहो, मत जानहो आज के काली। हर के संत जपहो हर जपना, हर संत चलै हर नाली। जिन हर जपया से हर हुए, हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलहो, हम साध जना पग राली। ए पावन पवित्र शब्द धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का आराग धनासरी विच उचारण किया होया है। अते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 667 68 ते सुभायमान है। इस शब्द के आरंभ विच गुरु साहिब जी ने जग्यासु द्वारा बेनती करन दी जाच सिखाई है। जग्यासु वलों एक बेनती कीती है कि हे प्रभु पातशाह, असी जीव अग्ञानता करके अंधे होए पए हाँ। आप जी दी चलाई हुई मर्यादा उपर किवें चल सकते हाँ, क्योंकि अंधे मनुख नूं एक थां तों दूजी थां तक जाण लई सहारे दी जरूरत हुंदी है। ते वो सहारा डंगोरी दा जां किसी मनुख दा हथ फड़ के ही हो सकता है, जिस नाल अंधा मनुख अपने असल टिकाणे ते सौखियां पहुँच सकता है। भगत नामदेव साहब जी दा फुरमान है, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। असल विच गुरु चाली केड़ी है, वो मर्यादा रूप रस्ता केड़ा है जिस उपर सिख ने चलना है। ये मर्यादा रूप मार्ग गुरु नानक साहब जी ने हर मनुख मात्र लई गुरमत गाड़ी राह बनाया है। इस मार्ग दे पंधी हर गुरसिख लई इस रूहानियत दे सफर नूं सौखियां करन वास्ते मनुखा जन्म दी सफलता ते प्रभु प्राप्ति रूपी मंजिल ते पहुँचण लई गुरु साहिब जी ने यह निज़म बनाए हन। अमृत वेले जागना, इशनान करना, नाम जपना, फिर धर्म की किरत करनी ते वंड के छकना, ते यही गुरु चाली है। संसार विच जीवन जिउण दे दो मार्ग हन। एक मार्ग है गुर अगवाई विच चल के जीवन बतीत करन दा, अते दूसरा मन की अगवाई विच चल के। गुरु की अगवाई विच चलन नाल जो सुख आनंद मनुख नूं प्राप्त हुंदा है, अते मन की मत पिछे चलन नाल मन की मत पिछे चलन नाल जो नुकसान ते दुख हुंदा है, उस बारे साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी बड़े विस्थार दे नाल समझाउंदे हन। हुण चोण मनुख ने करनी है कि गुरु अगवाई विच रह के आनंद माणना है जां मन दे पिछे लग के दुख भोगणे हन। फुरमान है, सो सिख सखा बंध पहै भाई, जे गुर के भाणे विच आवै अपने भाणे जो चलै भाई। विछड़ चोटां खावै बिन सतगुर सुख कदे ना पावै भाई, फिर पछोतावै। व्याख्या वाले शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां हन। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहै सोई पल मानहु, हर हर कथा निराली। भाव के गुरसिख मित्रो, गुरु साहिब जी दे दसे हुए राह ते तुरो, ते जो कुछ गुरु आखदा है उसनू अपने वास्ते भला समझो, क्योंकि गुरु परमात्मा दी सिफत सलाह करन नू आखदा है, ते सिफत सलाह मनुखा जीवन विच एक अनोखी तब्दीली पैदा करदी है। इस लई मनुख ने गुरु दी ओट लै के गुरु दी मत भाव गुरु चाली अनुसार चलना है। सो व्याख्या वाले शब्द दियां आरंभक पंक्तियां हन। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। भाव के असी जीव माया दे मोह विच अन्ने हो के

मेरे माथे लागी ले तूर गोबिंद चरणन की, सुर नर मुनजन तिन हूते दूर। आप जी सरवण कर रहे सो पाई हरबंस सिंह ते उन्हें रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक

0: शुरू होना देश की एआई यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वीरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-23-11-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी।
3: आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हैं आकाशवाणी का गीत।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले शाम दे 6:20 मिनट हो रहे ने, थोड़ी देर तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्ननू तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दियां खास खबरां। राष्ट्रीय नैसटिंग एजेंसी ने 21 जून में होने वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लिए प्रीख्या की मियाद 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट की। बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 सालों दौरान पंजाब को केंद्र तो बेमिसाल वित्तीय सहायता मिली है। मशहूर भारतीय शूटिंग कोच और एशियाई खेडों के सबका सोन तगमा जेतू जसपाल राणा का देहांत हो गया है। 49 साल के सन। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला दे विच पीलिया के मामलों की सूचना मिलने उपरंत किया टीम सने दौरा, कहा स्थिति काबू हेठ। पंजाब कल आए हनेरी झक्खड़ के मीह नाल कुड़ी दिन सने 2 लोगों की हुई मौत, 1 व्यक्ति गंभीर जख्मी। 14 जून तक इन्हों पंजाब के हरियाणा केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट किया गया जारी। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। राष्ट्रीय टैस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून में होने वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लिए प्रीख्या की मियाद 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट की है। नवा समा दोपहर बाद 2 बजे तो शाम 5:15 होएगा। सोधी हुई प्रीख्या की मियाद में लाजमी प्रीख्या अमलों की लोड़ीदा समा शामिल किया गया है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई सालों तो उम्मीदवारों तो प्राप्त प्रतिक्रम के आधार पर किए गए हैं। एजेंसी ने कहा है कि यह गल यकीनी बनाने वचन दे कि नीट UG प्रीख्या उम्मीदवार जरूरतों के अनुसार निरपक्ष सुरक्षित जवाबदेह ढंग कार्रवाई की जाए। सरकार ने संस्थागत सनती पार गाहकों परचून विक्रेताओं तो मीटर ईंधन हाई स्पीड डीजल खरीदने तो रोकने के लिए सरकार ने कहा है कि वह घरेलू पेट्रोल पंपों तो अपन जरूरत पूरी कर। पछमी एशिया में टकराव कारण आलमी सप्लाई लड़िया में विघन दरमियान स्थानक ईंधन की घाट को रोकने लिए यह फैसला किया गया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में यह कहा है कि पाबंदियां 90 दिन लागू रहनगियां, पर चून विक्रेताओं को प्रति गाहक प्रतिदिन वध तो वध 200 लीटर हाई स्पीड डीजल बेचने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि आदेश इस संकट दौरान जमाखोरी रोकने लिए एक अस्थाई उपाय। इसने तेल कंपनियां ते परचून विक्रेताओं को आदेश की पालना यकीनी बनाने लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने अज कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 सालों दौरान सूबे नूं केंद्र तो बेमिसाल वित्तीय सहायता प्राप्त की है। उन्होंने सूबे के लोगों को कुछ राजनीतिक पार्टियों वालों फैलाए गए गुमराहकुन बयान पर विश्वास करन तो पहला तथ्यों पर विचार करने की अपील की है। मौजूदा केंद्र सरकार की सफल यात्रा से सूबे के नागरिकों की भलाई लिए पंजाब नूं ट्रांसफर किए फंडां की रकम बारे एक वीडियो राही विखावा करते हुए श्री ढिल्लों ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां के दावों के उल्ट केंद्र ने इस समय दौरान टैक्स वंड ग्रांट इन एड GST मुआवजा ते केंद्रीय कर्जा राही पंजाब नूं 4,13,000 करोड़ रुपए तो वध भेजे हैं। उन्हें भी कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल दौरान लगातार वित्त कमिश्न अधीन केंद्रीय टैक्सों में पंजाब का हिस्सा लगातार वध्या है। श्री ढिल्लों ने अज चंडीगढ़ विखे एक मीडिया नाल गलबात करदे कहा
3: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਕਾਸ ਖੋਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4,13,000 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ।
2: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ही जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले शाम दे 7 बज रहे ने। हुण थोड़ी देर तुसी सुनोगे खबरां पंजाबी 'च।

0: पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? चूंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
1: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएँ चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुँच जाएंगे। इतना ही नहीं,

0: भिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज़ वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर।

0: लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज़ रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रुक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में

अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए, और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पर काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने, और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी हैं वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन की आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है, वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी, और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब, आप और मैं जिस सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने शब्द किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। उन्होंने भारत की बौद्धिक संपदा, ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफ्रेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2,500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों आज वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए, या अपनी लज्जा

0: छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब चाल या वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति अपितु तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई। राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था, सिर्फ एक गीत ना होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि बंदे नहीं, कि परिस्थिति की कल्पना कीजिए, जब अंग्रेज भक्ति की बात कर, स्वतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत, जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पांख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले, या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आज़ादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर का की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियाँ आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं।

0: देश भर एक साथ में एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सकें, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाएं। इसके लिए कंपटीशन आयोजित किए जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए हैं। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आज़ादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुँचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहाँ तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपरा, भारत के भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम, वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है, और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है, और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर

0: कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहाँ जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहाँ कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स से डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले रात दे 7:45 हो रहे हैं। लो हुण पेश है प्रोग्राम सबरंग।
1: हाजरीन, डॉक्टर चमन आहूजा का आदाब। सबसे पहले कुछ कतात महफिल अफकार से। सीखा कुतुब से इतना बहुत कुछ गुरु से पाया, सीखा कुतुब से इतना बहुत कुछ गुरु से पाया, है सबकी इज्जत लेकिन पूरा मिला न ज्ञान। जीवन ने दी जो सीख उसका न कोई अंत, मानू जीवन ग्रंथ वो मेरा गुरु महान। आदम के साथ फेंकी यजदान खुल्द से कलीद राज हस्ती, आदम के साथ फेंकी यजदान खुल्द से कलीद राज हस्ती है जो अब

न कोई अंत, मानु जीवन ग्रंथ वो मेरा गुरु महान। आदम के साथ फेंकी यजदान खुल्द से कलीद राज हस्ती, आदम के साथ फेंकी यजदान खुल्द से कलीद राज हस्ती है जो अब तलक भी गुम। नहीं आदमी के पास और ना ही है खुदा के, हैं जुस्तजू में गर्दा तभी मेहर माह अंजुम। अगला कता, ये सांस का आहंग, ये सांस का आहंग जैसे कि एक राग, और आखिरी वो सांस गोया शिकस्ते सांस है जामे जम जैसी गर्दिश गर्दों की, है मौत भी एक नगमा लेकिन बिना आवाज। है शीरी बहुत जुबाने फ्रंगी और देसी, लेकिन मेरी ये उर्दू है लासानी दिल रुबा। चर्चे चमन बहुत हैं गरबी आदाब के, चर्चे चमन बहुत हैं गरबी आदाब के, है उर्दू गजल की लेकिन कुछ अपनी ही अदा। एक और कथा हाजिर है, वल्लाह वो लुत्फे नगमा सरूर है रब्बानी, सरूर है रब्बानी, वल्लाह वो लुत्फे नगमा सरूर है रब्बानी, आहंग मौसीकी की हर हिस्से थर थर आती। सुकूत का पर वजद उसके तो क्या ही कहने, सुनसाज खामशी का है रूह गुनगुनाती। है फल को भींचते जब रस उसका आता बाहर, कड़वा है या के मीठा है जो भी उसके अंदर। हैं जब भींचते मसाइब, हैं जब भींचते मसाइब, चलता है तब पता है क्या मेरी औकात और क्या है मेरा जौहर। आखिरी कथा, चाहो बदलना दुनिया छोड़ो भी पागलपन ये, चाहो बदलना दुनिया छोड़ो भी पागलपन ये, सोचेगा कौन ऐसा जब तक है होश में। लेकिन मजे की बात दुनिया है जब भी बदली, बदली किसी खबती ने मस्ती में जोश में। अब मैं चमनजार में से एक नज्म पेश कर रहा हूं जिसका उन्वान है चुटकी भर सिंदूर। हाँ कीजिए तो याद और फरमाइए जरा, कहे आपने भी सोचा तन्हाई में कभी, कि औरत के सब श्रृंगार किस लिए हैं गोल, खूब बिंदिया या के बुंदे, झुमका या के नथनी, चूड़ी या अंगूठी, बाजू या कमरबंद, न केवल मंगलसूत, हार सब गले के तमाम गोल गोल पाजेब बछवे तक। हाँ जी हाँ, है मैंने सोचा और की बहुत है खोज, है जा मिला जवाब, माजी के उन दिनों में थे लोग रखा करते जब गुलाम जर खरीद, और अपनी मिल्कियत का करते भी थे ऐलान, पहना के उनके कानों में मोटे मोटे कड़े, यानी उन्हें बना के हल्का बगोश खादिम। थी तो बेड़ियां ही जेवर मगर कहलाई, देते थे लाद इतना के भाग तक न पाए, बल्कि ये पहन के गुलामी पे करे नाश। वल्लाह थी क्या अय्यारी जो चल रही है आज तक, वल्लाह थी क्या अय्यारी जो चल रही है अब तक, सोने की बेड़ियों में देवियां खुशाज। और ये टैटू का बढ़ता हुआ रिवाज है फिर दिलाता याद पुराने उन दिनों की, डंगर मवेशियों की जब ब्रांडिंग हुआ करती, था होता नाम नंबर मालिक का यूं कुरेदा, के थे लोग जान जाते किसके अस्तबल में पाली जा रही है गाय वो मासूम, था मालूम ना गाय को क्या उससे हो रहा है, और ना जानती अब औरत क्या उससे हो रहा है, जब कंधे लात छाती लिखवाती है वो नाम आशिक का खाविंद का, के लोग जान पाए मालिक है इसका कौन है किसकी हो चुकी है। और देखिए सर उसके वो चुटकी भर सिंदूर, अंदर चमकते जिसके नन्ने नन्ने तारे, जैसे ऐलान करते उनकी गुलामी का, है मुझको ये भी लगती मर्दों की एक चाल, यानी के एक तरीका जताने का दुनिया को, के है बिक चुकी मोहतरमा नहीं रही बिकाऊ, न देखे उसको कोई अब गाहक की निगह से, है उसका अब एक मालिक जिसके नाम की वो है फिर रही सजा के सिंदूर की एक चुटकी, के हक ये जान पाए लोग दूर से ही, पड़ता है बोल ऊंचा सिंदूर का वो रंग। बरगदनामा पूरे का पूरा पीरी की नजर किया है, इसमें शाम जिंदगी के मुख्तलिफ रंग, तजुर्बात, तफक्कुरात, मसाइल, मशागिल, उलझने, लाचारियां पेश की गई हैं। लीजिए एक गजलनुमा नज्म जिसमें बुढ़ापे की गुनागुन बीमारियों का नक्शा खींचा है। दिल का करूं इलाज टाइटल है इसका, दिल का करूं इलाज या देखूं जिगर को मैं,
तौफीक हो।

तो पास रख लूं डॉक्टर को मैं, बस हौसले हुए हैं सभी तो अंगों के, डालूं बदल ये जानू या कस लूं कमर को मैं। न मुंह में रहे दांत समात कहे विदा, रोता हूँ साथ छोड़ते नूरे बसर को मैं। पहचान पाऊं शक्लें न याद आए नाम, लफ्जों को भूल बैठा हूँ जेरो जबर को मैं। सबसे सितम जरीफ तो निकला मेरा दिमाग, मंजिल से पूछता जो क्यों आया इधर को मैं। पीने का जहरे जीस्त आदत जो है बनी, सालों से ले रहा हूँ दवा बे असर को मैं। मिलने तो कोई आता नहीं दोस्त या रकीब, बस ताकता ही रहता हूँ दीवार और दर को मैं। उम्रे तवील क्या है फकत एक अजाब है, उम्रे तवील क्या है फकत एक अजाब है, कहता हूँ फिर भी जीते रहो हर बशर को मैं। जाते जाते एक गजल चमनजार से, जिसमें इंसान खुद से हम कलाम है, वो जान नहीं पा रहा क्या आखिर वो है क्या। मैं जानता न हरगिज क्या क्या जनाब हूँ मैं जानता न हरगिज क्या क्या जनाब हूँ मैं, खारू कहूँ मैं गुच्छा या के गुलाब हूँ मैं। मखलूक हूँ मैं अशरफ हाँ लाजवाब हूँ मैं, पर फेंका जिसे खुदा ने वो इंतखाब हूँ मैं। है बनाई मैंने दुनिया धरती पे खूबसूरत, गो कुदरत का मानना है कि खाना खराब हूँ मैं। यूं दिल दिमाग रूह सब है मुझे मयसर, न जिन में आहंग लेकिन ऐसा रबाब हूँ मैं। न मुझको भला मिला क्या, न मुझको भला मिला क्या, और वैसे मिला भी क्या है। एक गुना हूँ समंदर एक गुना शराब हूँ मैं, पंजा तो है जमी पे फलक पे टिकी हैं आंखें, बेबालों पर के गोया जख्मी उकाब हूँ मैं। लाशऊरी के पर्दों में खो बैठा हूँ मैं चेहरा, कब जानता हूँ खुद को मुजस्सम निकाब हूँ मैं। कुछ तो बात होगी कायम हूँ मैं अजल से, कुछ तो बात होगी कायम हूँ मैं अजल से, फिर क्यों है लोग कहते कि एक हबाब हूँ मैं। जब से हुआ हूँ पैदा है मुझको तलाश अपनी, शायद सवाल हूँ मैं शायद जवाब हूँ मैं। है इंसान यूं तो पहुंचा चांद तारों से भी दूर, हैवानियत क्या कम हुई आंखें घुमा के देख ले। है जिंदगी अपनी जगह और मौत है अपनी जगह, जिंदा लाशें फिर भी हैं नजरें उठा के देख ले। मजाजी हो या हकीकी इश्क तो एक फर्ज है जिस्म की गरज ये वो रूहानी कर्ज है। हो ये नारी और वो नूरी ऐसा तो लगता नहीं, मेरी निगाहे नक्श में रिश्ता तूलो अर्ज है। मिल जाएगी क्या मुक्ति या होगा सभी खत्म, जन्नत नसीब होगी या दोजख चलेंगे हम। है बदतरीन लेकिन वो पुनर्जन्म की बात, फिर झेलने पड़ेंगे दुनिया के कर्बो गम। जिंदगी के आईना में है खुद को देखा बार बार, जिंदगी के आईना में है खुद को देखा बार बार, पर नहीं पहचान पाया कि मैं आखिर कौन हूँ। वक्त की बिसात पे शातिर हूँ या मोरा हूँ मैं, खल्क हूँ या के खालिक, जिक्र जाकिर कौन हूँ। लाई हयात आए कजा ले चली चले, कहाँ सीखने की फुर्सत कब जीना कैसे मरना। ऊपर शैतानी सांप या इर्तका के जीने, है फना की ये बिसात क्या चढ़ना क्या उतरना। ये जिंदगी है खेल इसे दिल लगा के खेलो, है सबसे अहम शरकत ना के जीत हार। गुलशन में गुल के साथ होते हैं खार भी, रहता चमन चमन है खिजां हो या बहार। कीड़ा रहेगा कीड़ा अजगर हो या के जुगनू, इंसान याद रख तू बदलती नहीं या खूब। कीड़ा रहेगा कीड़ा अजगर हो या के जुगनू, इंसान याद रख तू बदलती नहीं या खू। तू सोशल हो गया है पर है तो जानवर ही, बन सकता ना फरिश्ता रहेगा जानवर तू। इम्तिहान जिंदगी के लगते बहुत अजीब, कि जिनकी मैंने नकल वो पास और मैं फेल। उफ उम्र भर कुढ़ा मैं पर मिलते मिला ये राज, उफ उम्र भर कुढ़ा मैं मरते मिला ये राज, पर चे थे अपने अपने न आपस में कोई मेल। है आज और कल में तो फर्क बहुत जनाब, जीवन में चाहिए क्या ले लेते हैं मिसाल। कोशिश थी कल के डालें सालों में जिंदगी, कोशिश थी कल के डालें सालों में जिंदगी, है आज लेकिन काविश बढ़े जिंदगी में साल। जिस जुल्मत कदा को मैंने है कर दिया मुनवर, वह

0: क्योंकि वहां पे खुद ही मुकद्दस किताब हूं मैं, खुद खुदा खुदी को है उलझा दिया यूं मैंने, समझा सवाब खुद को खुद ही सवाब हूं मैं, है रोना सदा फना का पर नशा चढ़ा बका का, मैं खार भी हूं खुद में खुद ही शराब हूं मैं, शायद सब जानता हूं शायद सरासर जाहिल हूं, देखता मैं ख्वाब या खुद ही ख्वाब हूं मैं, जुगनू हूं महज जुगनू कितना करूं उजाला, महताब तक नहीं मैं कब आफताब हूं मैं, शायद खुदा ने मुझको दानिस्ता दलदल डाला, रुजत पसंद होके एक इनकलाब हूं मैं।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲਮ ਏ ਸ਼ਾਇਰ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਆਹੂਜਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਫਰਮਾਓ ਚੰਨ ਗਜ਼ਲਾਂ।

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीन है चल रहा है और हुण समा हो गया है थोड़े जे अंतराल लैण दा। फिर मुड़ तो हाज़र होने आ इसे जोश दे नाल, इसे मुस्कान दे नाल, इही तरीके दियां गल्लां करदे होए फिर तो मिलदे आ। तद तक लीजो इजाज़त, थोड़ा जा अंतराल।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उना ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: लो जी, फिर मुड़ तो हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है लैके। जिंदगी हसीन हो ही गई है, ये तो असी मान लिया, और किद्दां होनी है उहदे उत्ते भी असी चर्चा कर ली है। लो जी, इस प्रोग्राम दे विच हुण तुहानूं एक कहानी सुनाउंदे, छोटी जी कहानी है, आपां उहदे सबक लैने, समझदे हां। एक पिंड विच एक बजुर्ग रहिंदे सी, उह हर वेले खुश रहना जाणदे सी। उन्हां दी आदत ही सी कि हमेशा खुश रहना उन्हां नूं आउंदा सी, तुसीं ये समझ लो। एक दिन किसी ने पूछा कि बाबा जी थोड़ी खुशी का राज की है? बाबा जी मुस्करा के बोले, मैं हर सवेरे दो चोणा करता हाँ, एक शिकायत करनी है, दूजी शुकराना करना है। मैं हर दिन शुकराना करना यही चुनदा कि मैं जो चीज़ मिली है उदा थैंकफुल रब नूं शुकराना करना जानदा वा, या तुसी समझ लो कि मैं चुनदा वा। सो सानूं इत्थों यही सिक्ख्या मिलती है कि जिस कोल शुकराने वाला दिल होवे ना, उस लई हर दिन एक त्यौहार वांगू हुंदा है। शुकराना करन दी आदत पाउणी बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच, मानसिक शांति, ये सारियां चीज़ां तां ही आणगियां जे साडी सोच दी असी चोण की करते हैं। लो जी, गल्लां बातें इदां दीआं चलदीआं रहणगीआं और करदे वी पए आ साडे, असी पिछले अद्धे घंटे तों होर 15 मिनट दा इह जिहड़ा प्रोग्राम रह गया, इदां ही असीं गल्लां बातें करीए और तुसीं साडे नाल जुड़े रहो, आनंद माणो जी इस गीत दा।

0: प्रोग्राम चल रहा और जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम दे विच असी हर बार ये जानते हैं कि जिंदगी नूं हसीन किद्दां कीता जावे। जिंदगी हसीन करन लई सब तो पहला अज असी इस गीत तो बाद सुनते हैं कुछ मंत्र। पहला मंत्र जिंदगी का, अगर असी जिंदगी हसीन वाकई चाहते हैं कि जिंदगी हसीन होवे ते हर दिन शुकराना करो, सवेरे उठ के रब का धन्यवाद करो, अपने परिवार नूं समां दिओ। परिवार भरे रिश्ते सब तो वड्डी दौलत हुंदी हन। दौलत कोई पैसा नहीं, दौलत परिवार दे जी हुंदे हन। जदों तुसी एक टाइम दे आके परिवार सारा कट्ठा बैंदा है, उस तो वड्डी दौलत कोई नहीं। ते तीजा मंत्र, अपनी सेहत दा ध्यान रखो, तंदुरुस्ती ही सब तो वड्डी खुशी है। और चौथा मंत्र जिंदगी दा, अगर तुसी वाकई चाहुंदे हो कि जिंदगी दियां फालतूआं गल्लां तों असी दूर रहिए, उहदे लई साडा चौथा मंत्र है माफ़ करना सीखो। दिल का पार बहुत हल्का हो जाता है। और अखीरला मंत्र, मुस्कुराना ना भुलो। थोड़ी मुस्कान किसी का दिन सोहना बना सकती है, तो जे तुसी किसी नाल कौड़ा बोलोगे तो उन्हों का दिल भी दुख सकता है। लो जी, गल्लां बहुत सारिया करन नूं है पर साडे को समा भी इजाजत नहीं दिंदा। 8:45 ते साडा अखीरला जिहड़ा मिनट खत्म हो जाएगा। लो जी, आनंद माणो जी इस गीत का, ते मिलते हैं इस गीत तो बाद फिर दोबारा।
1: Thank you.

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी हसीन है प्रोग्राम दा हुण आखिरला गीत, क्योंकि हुण टाइम हो गया जाण दा साडे वी, क्योंकि समां इजाजत नहीं देंदा। पर अज दी विदाई तो पहला मैं एक सोहना जिहा विचार तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदा कि जिंदगी उस वेले सब तो ज़्यादा हसीन लगती है जदों असी दूजियां दे चेहरियां ते मुस्कान लियांदे हाँ। तो मैं तो थोड़े नाल जुड़िया होया सी पिछले अधे घंटे तो 45 मिनटा तो थोड़ा दोस्त गगन ते थोड़े तो हुण इजाजत लेना। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो ते अपने नाल प्यार वंडदे रहो। जय हिंद।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर

अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की नीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता पर

0: दृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे

0: पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney.

देहांत। मौसम विभाग ने 14 जून तक पंजाब हरियाणा ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल मीह बारे येलो अलर्ट जारी किया। औरतों का ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप अज तो शुरू हो रहा है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री

0: स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली

0: के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakil. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
1: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last

0: वाह
1: खाना
0: वाह,
1: बना लिया।
0: बहुत खुशी हुई इतना गलबात करके। ते दिने भी मौका मिल जाता सारे प्रोग्राम सुनने का कि सिर्फ रात सुन पाते
1: हाँ
0: हो?
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मोबाइल से ही
0: ठीक है। ते जनक राज जी आज
1: कारीगर
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: होंगे
0: रेडियो की खासियत यही है जनक राज, तुम्हें पता ही है कि बंदा नाल नाल अपने काम कर सकता है और रुझेवे पूरे कर सकता है, नाल नाल मनोरंजन का दौर जारी रहता है रेडियो का। अज कीड़ा की सुनाओगे सारियां नूं? वाह जी वाह, बहुत प्यारा गीत है जनक राज जी। और अगर बंदा ध्यान ना सुने ना तो ये बहुत गहराई च जाके तुम समझ आती है कि दुनियादारी जी है किसी के हाथ च नहीं है। असं कहने वो आ गया वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, वाकई परमात्मा ही करता जो करता। कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, थोड़ी पसंद का गीत तक पहुँच रहे हैं, बहुत प्यारा गीत। इस गीत तो बाद मैं फिर हाजिर होना जी।

0: सुरिंदर कौर रमेश रंगीला दे इस युगल गीत ने प्रोग्राम दा रंग बन दिता। पुराना गीत पर फिर शरारत भरपूर और पूरा रस भरिया गाना, मज़ा आ गया जी। विष्णु जी बहुत बहुत शुक्रिया इन्ना प्यारा गीत सुनवाने दे लई। प्रोग्राम जारी रखते हुए हुण आपां अपने अगले कॉलर नाल गलबात करते हैं जी। हैलो
1: अमित जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने, किस जगह तो?
1: देसराज ड्राइवर, तहसील ढोआना, जिला फतेहबाद, हरियाणा तो।
0: ओ बल्ले बल्ले, तुसी तो पूरा एड्रेस सुनाता है, जे असी आ जाइए तुहानू मिलन फिर।
1: जदों मर्जी आओ जी।
0: तुसी पूरा एड्रेस समझाता, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद जी। ते देसराज जी, दिन भी मौका मिलता है प्रोग्राम सुनने दा कि सिर्फ राती सुनदे हो?
1: नहीं, मौका तो मिलता है जी, पर कॉल नहीं लगती जी।
0: हाँ, वो तो रात भी नहीं दिन भी लगती है, मानता। मैंने हूँ थोड़ी देर पहले एक मैसेज पढ़ रहा व्हाट्सएप, किसी साढ़े साथी ने लिखा से कि तुम तीन चार लाइन शुरू कर लो, तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा चाहे चार हो पाँच हो, आप गलबात सिर्फ एको लाइन पर कर सकते हैं ना, तो जिस उपर कॉल होएगी वह मतलब फिर एको काम तो फिर एको लाइन आएगी ना फिर।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: इस करके तुम हार नहीं मनी, ट्राई करते रहना जी, थोड़ी कॉल जरूर जरूर लगेगी। अच्छा दूसरा जी, किड़ा की सुनवा रहे हो? उम्मीद करदे आं तुसीं सानूं इस तरह कॉल करोगे और प्रोग्राम दा हिस्सा बनदे रहोगे जी। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, साडा नंबर नोट करो 0181 2813074।

आओ फिर हुन प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस। अगला व्हाट्सएप मैसेज सानू फरीदकोट तो मिले है, मॉडर्न कलोनी तो मैसेज भेज रहे ने राहुल शर्मा, बबलू शर्मा, दिव्यांश शर्मा ते बहुत सारे साथी। एक कहते हैं सानू कोई भी तुसी कंठ कलेर की आवाज़ों में गीत सुना दो। लो जी तुहाडी पसंद का गीत तुहाडे तक पहुँच रहा, मैसेज करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुसी भी सानू मैसेज करना चाहते हो तो साडा नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो 94655 36077। मैसेज टाइप करना जी, सब तो उपर अपना नाम लिखना है, अपने सारे साथियों का नाम लिखना है जिहड़े फरमाइश शामिल हो रहे हैं, उस तो बाद तुसी किहड़ा गीत सुनना चाहते हो, उहदे बोल किहड़े सिंगर दा गाया होया और किहड़ी मूवी चो पिक्चर चो अगर वो दस सको तो होर वधिया हो जाएगा। और अंत विच तुसी अगर कोई छोटा मोटा संदेश लिख के भेजना चाहते हो भी जरूर शामिल करो और सेंड कर दिओ जी 94655 36077 नंबर पर। अगर तुसी मैसेज इंडिया के बाहरों कर रहे हो तो +91 साडा कंट्री कोड है इंडिया का, यानी 0091 लगाना ना भुलना जी। आओ फिर आनंद मानते हैं जी कंठ कलीर ते गाए हुए इस

गाइए गुण गोपाल कृपा निध, दुख बेदारन सुख दाते सतगुर, जाको पेटत हुए सगल सिद्ध। ए गुरवाक, अकाल पुरख परमात्मा ते पूरन भरोसा रखन वाले गुरमुख जना दे हिरदे दी उस लोचा दी तर्जुमानी करता है, जिस विच्चों प्रभु दे गुण गायन करन दी तीबर इच्छा प्रगट हुंदी है। पर प्रभु दा गुण गायन प्रभु दी किरपा तो बिना नहीं हो सकता। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी राग कल्याण विच उचारत शब्द विच अकाल पुरख परमात्मा पासों ऐसी किरपा दी जाचना करदे हन। आप सुंदर दृष्टांत दिंदे हन कि जिस तरह पंवरा फुल्लां दे आले दुआले मंडरौंदा होया गुणगुणौंदा है, हे प्रभु मेरा मन आप जी दे चरण कमलां दा पंवरा बन के आप जी दे गुण गायन करदा रहे, साडे ते ऐसी किरपा करो जी। फरमान है हमारा एह किरपा की जय, अल मकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीझै। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: हेर रीछै। इस शब्द का गायन किया सी डॉक्टर अलंकार सिंह होरा। प्रभु दा नाम जीवन दा आधार है, संतां भगतां दा ऊट आसरा है, उन्हां दी पूंजी है। नाम काम तेन गऊ ते पार जात रुख दे तुल है। ये दृष्टांत इस करके दिते गए हैं कि नाम सर्व सुखदायक है। कलयुग दी रुत विच नाम रूपी बीज बीजण दी हिदायत है। ये बीज अंकुरित होके एक दिन पार जात रुख बन जांदा है, जिस दे फुल ते फल अनेक प्रकार दे हुंदे हन, मानो रतन जवेहर प्राप्त हो जांदे हन। दरअसल ये अनंदत हिरदे दी आत्मिक सिखरली आनंदमयी अवस्था है। इंच महसूस हुंदा है कि मानो बसंत रुत विच एक अनोखा रुख जम्या है। सुनदे हां डॉक्टर सोहन सिंह होरां पासों वार्ता, बिरख जम्यो है पार जात।
1: मनुख हमेशा ही अपने जीवन नू सुखी बनाउण वाल लगा रहिंदा है। उस दी हर एक सोच ते हर एक जतन सुख दी प्राप्ति ते दुख दी निवृत्ति लई ही हुंदा है। इस सुख दी प्राप्ति लई ओ अनेक भांत दे जायज़ ते नाजायज़ काम भी करदा है। सुख नू भोगण दी लालसा किसे एक विशेष समय दे मनुख दी ही नहीं, बल्कि ये हर समय दे मनुखां दे सुभा दा हिस्सा बनी रही है। इसे लालसा अधीन जिथे अज दा मनुख पैसे दी ताकत राही सुख प्राप्ति दे साधना नू जुटाउण विच व्याकुल होया दिखाई देंदा है, उथे पौराणिक कथावां विचों भी अनेक अजिहियां उदाहरणां सामने आउंदियां हन जिन्हां तों अजिही ही भावना दा पता लगदा है। सुख दा संबंध क्योंकि मन दी इच्छा नाल हुंदा है अते इन्हां पौराणिक कथावां विचों अनेक अजिहे करामाती साधना दी सूह मिलदी है जिन्हां द्वारा इन्हां साधना दे मालकां नूं बिना किसे यतन दे मन इच्छित फल दी प्राप्ति हो जांदी है। इन्हां करामाती साधना विचों काम तेन गऊ वांग ही मनोकामनावां पूरियां करन वाले पार जात नां दे एक रुख दा जिक्र भी आउंदा है। इस रुख संबंधी ये कथा प्रचलित है कि देवतियां दे राजा इंद्र दे नंदन बाग विच अपने विशेष गुणा करके जाने जांदे मंदार, संतान, कल्प, हरि ते पारजात पंज उत्तम किस्म दे रुख सन। पारजात रुख देवतियां नूं समुंदर मंथन दे समय प्राप्त होया सी। इस रुख नूं कृष्ण जी ने इंद्र दे बाग विचों पुट के अपनी प्यारी सतभामां लई लै आंदा। इस पौराणिक कथा दा जिक्र गुरु नानक देव जी ने राग आसा दी वार विचले अपने सलोक जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया विच भी कीता है। लोकाई दे कल्याण दी भावना नू सामने रखदे होए बाणीकारां ने क्योंकि बाणी संदेश लोकां तक पहुँचाउण लई हर एक विधि नू अपनाया है, इसे लई उन्हां ने पौराणिक कथावां दे हवालियां राहीं भी अपनी गल लोकां तक पहुँचाई। गुरबाणी विच बेशक अजिहे होर भी अनेक हवाले वरते गए हन, पर किते भी बाणीकारां दा उदेश इन्हां दी स्थापती जां प्रोड़ता करना नहीं बनदा, बल्कि समूह बाणीकार केवल इन्हां पौराणिक संकल्पां नूं एक माध्यम वजों ही अपनाउंदे हन। इस श्लोक विच भी गुरु नानक देव जी मुक्ति दा साधन केवल निर्माणता सहित कीती गई प्रभु बंदगी नूं ही प्रवान करदे हन। इस प्रकार गुरु दृष्टि विच सब तों वड्डा ते इकलौता पार जात केवल ते केवल प्रभु नाम ही है। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਤਿਹਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਜਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਉਸ ਲਈ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰੂਪੀ ਬਹਾਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਘੜੀ, ਪਲ ਆਦਿ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੂੜੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ

गुर सेवाओ कर नमस्कार, आज हमारे मंगलचार, आज हमारे महा आनंद, चिंत लथी पेटे गोबिंद। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

एक विशेषता है भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम और क्रोध बिनासन लोभ मोह वश।

छतर सिंहासन प्रथमी गुरु अर्जन को दे आयो, छतर सिंहासन प्रथमी गुरु अर्जन को दे आयो।

राग बिलावल महला पंजवा कार दूजा या नड़िए कै कार गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद

प्यारे राखन का तुम एक रहा सतगुर पूरा जे मिला प्यारे सो जन होत निहला गौर की सेवा सो कर प्यारे जैसनो हो सफल मूरत गुर दियो स्वामी सर्व कला पर पूरे

0: जियां बज न कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सुत क्यों कर रखी है सुतक पवेर सोए, नानक सुत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुत कूड़, अखी सुतक वेखना परतरे पर तन रूप। कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए, नानक हंस आदमी बदे जम पुर जाए महला पहला। सबो सुतक भरम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए। खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाए, नानक जिनी गुरमुख बूझ।